34 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 की वैशाख मास की 21वीं तिथि तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को

0: भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहरी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रद्धा भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे शिव शंकर, आप अनंत अनादि देवों के देव महादेव हो। आप अजर अमर अविनाशी हो। आपको हम बारंबार नमन करते हैं।

जिनके मस्तक मोर मुकुट हैं शोभी, होठों पे बांसुरी प्यारी, उंगली पर गोवर्धन पर्वत और सबके दिल में गिरधारी।

0: आप ही अब सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर्थीय एमएस सुब्बलक्ष्मी, अनूप जलोटा, अनुराधा पौड़वाल और साथियों के। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार।
1: अधिकार हजम करने के लिए जब तक पूरी कीमत ना चुकाई जाए, तब तक यदि अधिकार मिल भी जाए तो आप उसे गवां बैठेंगे। ये शब्द हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। सचमुच अनायास मिला हुआ कोई भी अधिकार स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पाने के लिए व्यक्ति ने वो साधना नहीं की जो अधिकार को अनुशासन में रखती है। मनुष्य जब भी बिना प्रयत्नों के अधिकार प्राप्त कर लेता है, वो या तो उसे स्वेच्छाचारी बना देता है अथवा फिर स्थायी नहीं रह पाता। आज प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे अधिकार सुख भोगने का अवसर मिले, और उसके लिए वो उचित अनुचित हर प्रकार के साधन अपनाने के लिए तत्पर रहता है, पर अपने मन में झांक कर ये देखना नहीं चाहता कि अपने अधिकार के लिए क्या उसने अपनी पात्रता सिद्ध की है। वल्लभ जी जब अधिकार हजम करने की बात कहते हैं, तब उनका आशय उसकी कीमत चुकाना, उस अधिकार को प्राप्त करने की साधना द्वारा उसके लिए अपनी पात्रता सिद्ध करने से होता है। ये साधना बातों से अर्जित नहीं होती, उसके लिए हर क्षण काम में लगे रहना आवश्यक है। भविष्य की चिंता किए बिना हम वर्तमान

0: अपने काम में लगे रहें तो कोई कारण नहीं कि हमारा आने वाला कल उज्जवल ना हो। बल्लव जी कहा करते थे, जो काम कल करने का है उसकी बातों में ही आज का काम बिगड़ जाएगा और आज के बिना कल का काम नहीं होगा। हम अपने फर्ज से चूक जाएंगे, आज का काम कीजिए तो कल का काम अपने आप हो जाएगा। ये प्रेरक शब्द यदि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं तो इसलिए क्योंकि इनमें सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। हमारी विडंबना यह है कि हम भविष्य के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाने में अपने समय का अपव्यय करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि आज हमारे कार्य करने की जो गति होनी चाहिए थी वो शिथिल होकर हमारे लक्ष्य को हमसे और दूर कर देती है। यदि हमें अपने आप को या अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाना है तो एक एक क्षण का रचनात्मक ढंग से उपयोग करना होगा और इसके लिए आवश्यक है कठोर परिश्रम। पटेल जी का मानना था, जाति भेद के विष को जब तक हम सद्भाव के अमृत के साथ बदल नहीं देंगे तब तक हमारे देश का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हमारे सामाजिक जीवन में भेदभाव बने रहें और हम राष्ट्रीय रूप में आगे बढ़ सकें। राष्ट्र की उन्नति तो व्यक्ति के विकास से ही आरंभ हो जाती है। ये हमारा कर्तव्य है, जो दुर्बल हैं उनको आपसी सहयोग के बल पर इतना सक्षम बना दें कि वे भी समाज और राष्ट्र के विकास में भरपूर योगदान दे सकें। पटेल जी का मानना था, व्यक्तियों के अच्छे जीवन से ही सामाजिक जीवन ऊंचा होता है। जिनके पास कम शक्ति हो, शक्ति वालों को उसे ऊंचा उठाना चाहिए। समाज में से ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा देना चाहिए। पटेल जी का ये उद्बोधन हमारे जीवन के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है। भौतिकवाद ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसके अनेक अच्छे और बुरे परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने जहां मनुष्य मनुष्य के बीच की भौतिक दूरियों को पाटा है, वहां जीवन की आपाधापी एवं परिस्थितियों के दबाव ने उसे आत्म केंद्रित और स्वार्थी भी बनाया है। ऐसे में वो केवल अपने बारे में सोचता है, किंतु सामाजिक विकास केवल कुछ व्यक्तियों की उन्नति का पर्याय तो नहीं। सामाजिक विकास तो तभी संभव होगा जब सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे, और ये कार्य लंबे चौड़े व्याख्यानों से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए कर्म की कठोर साधना की जरूरत है।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी गर्मियों की जुताई से लाभ के विषय में डॉ. महेंद्र कटियार की वार्ता। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉ. सत्य मित्र कान के दर्द के कारण और उसके उपचार के विषय में जानकारी देंगे।

उदय भानसिंह की गाय डुग्गी हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के एक कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के एक कार्यक्रम में सुनेगा शुभ्रा तलेगांवकर का राग विलास खनी तोड़ी में ख्याल गायन। 11 बजे आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे पटकथा लेखक

सतीश भटनागर के बारे में और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ। चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर।

12 बजे सुने का प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम खर संसार में आप सुनेंगे आधुनिक गैजेट्स के दुष्प्रभाव के विषय में शैली अग्रवाल की वार्ता। फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा सिविक सेंस। पंकज उधास की गाई गजलें हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर।

हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:10 पर। हमारी युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कुणाल कालरा की वार्ता, जिसका विषय होगा मानव जीवन की बेहतरी के लिए तकनीकी। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा डिजिटल लत। नई पहल के तहत हम जानकारी देंगे स्वामित्व योजना के बारे में। 6:00 ग्रामीण कार्यक्रम में आप सुनेंगे ड्रोन तकनीक से फसल स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी के विषय में कृषि विभाग के पूर्व उप निदेशक डॉ राधेश्याम सिंह से श्री अनिंद्र सिंह की बातचीत। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे खेती में नवाचार और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। छह बजकर 30 मिनट पर मत्स्य मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा श्रमिक और बचत। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा डॉ शिवचंद प्रसाद की वार्ता, जिसका विषय होगा समाज का निर्मम आईना है मंटो की कहानियां। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शुभ्रा तलेगांवकर का राग केदार में ख्याल गायन। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस कांड।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान गायक कलाकार थी उषा मंगेशकर। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए अब आपको सुनवाते हैं गर्मी की जुताई से लाभ के विषय में डॉक्टर महेंद्र कटियार की वार्ता।
1: जुताई का इतिहास बहुत पुराना है। आदिकाल में मनुष्य भूमि को लकड़ी, हड्डी तथा पत्थर के बने मोटे औजारों से खोदकर फसलें उगाता था। कई शताब्दियों के बाद उसने घोड़ों, बैल आदि पशुओं को पालतू बनाकर लकड़ी के यंत्रों द्वारा उनसे खेती के काम में सहायता लेनी प्रारंभ की। लोहे के आविष्कार के साथ साथ जुताई गुड़ाई के ऐसे यंत्र बनने लगे जिनसे खेती के काम में अधिक सुविधा होने लगी। आज मिट्टी पलटने वाले हल, निराई गुड़ाई के यंत्र, कल्टीवेटर, हैरो आदि अनेक कृषि यंत्रों ने खेती में क्रांति कर दी है। कुछ प्रारंभिक अमेरिकी वैज्ञानिकों का मत था कि जुताई से भूमि की अच्छी खुदाई हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें सुगमता से काफ़ी गहराई तक जा सकती हैं और उनके संपर्क में अधिक भूमि के आने के कारण पानी तथा पोषक तत्वों का अवशोषण सुगमता से होता है। जुताई फसल उगाने के लिए मृदा को तैयार करने की वह पद्धति है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। गर्मी की जुताई रबी की फसल कटने के बाद शुरू होती है तथा वर्षा प्रारंभ तक होती है। यह अप्रैल से जून तक चलती है। ग्रीष्मकालीन जुताई में दो बातें ध्यान रखते हैं।

पहला है जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, दूसरा मिट्टी के ढेले बड़े बड़े रहें, यह भुरभुरी ना होने पाए, अन्यथा गर्मी में तेज हवा मिट्टी के छोटे छोटे कणों को उड़ाकर ले जाती है। गर्मी की जुताई से अनेकों लाभ हैं, जैसे बहुत से कीट फसल के अवशेषों में रहते हैं, मक्का का बेधक कीट, वाइट ग्रब, दीमक आदि। गर्मी की जुताई के समय इन कीड़ों के अंडे, प्यूपा तथा लार्वा आदि भूमि की सतह पर आकर नष्ट हो जाते हैं तथा वे चिड़ियों आदि के द्वारा खा लिए जाते हैं। जुताई से मिट्टी में कीड़ों के आश्रय भी टूट जाते हैं तथा बहुत से कीट जुताई आदि क्रियाएं करते समय ही मर जाते हैं। इसी प्रकार फसलों की कुछ हानिकारक फफूंदियाँ, जीवाणु आदि भी सड़े गले फसल अवशेषों अथवा मिट्टी की सतह पर पड़े अन्य जैव पदार्थों पर पनपते रहते हैं, जो फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे चना तथा मसूर के झुलसा रोग को फैलाने वाली फफूंदी व गेहूं में रोग फैलाने वाली फफूंदी, इससे रूट रॉट, पौध अंगमारी, तना सड़न आदि रोग भी लग जाते हैं। खेत में मक्का के डंठलों के पड़े रहने की स्थिति में जब गेहूं या जौ को बो दिया जाता है तो इन डंठलों में फफूंदी की उपस्थिति के कारण अनाजों में बीमारी लग जाती है। इससे गेहूं या जौ उगाने के लिए इन डंठलों को गहरी जुताई करके मिट्टी में दबा देना चाहिए। फसलों को खरपतवारों से जल, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए संघर्ष में सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है। साधारणतया फसलों को इन पदार्थों की आवश्यकता एक निश्चित अनुपात में होती है, परंतु यदि इनमें से कोई एक चीज़ खरपतवारों द्वारा उपभोग कर ली जाती है तो अन्य दो चीज़ें फसलों को उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी फसलें इनका उपयोग नहीं कर पाती, जिससे फसलों की उपज घट जाती है तथा कुछ हानियाँ होती हैं। प्रयोगों द्वारा पता चला है कि खरपतवारों के कारण फसलों की उपज में लगभग 15 से 20% तक की कमी आ जाती है। खरपतवारों के कारण फसल उत्पादन के खर्च में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे शुद्ध लाभ कम हो जाता है। फसल की क्वालिटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे सत्यानाशी के बीज यदि सरसों में मिल जाएं तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। इसी तरह जंगली प्याज व लहसुन आदि के जानवरों के हरे चारे में मिल जाने पर उनके दूध में दुर्गंध आने लगती है। कांटेदार खरपतवारों के भेड़ बकरियों के बालों में चिपकने से ऊन व बालों की क्वालिटी घट जाती है। कई खरपतवार रोग व कीटों को शरण भी देते हैं। फसलों के खेत कट जाने के बाद विभिन्न प्रकार के कीट, फफूंदी आदि अपना शेष जीवन चक्र खरपतवारों पर पूरा करके नई फसल पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं, जैसे जंगली जई, गेरुई को तथा हिरन खुरी कद्दू वर्गी कीड़ों को परपोषित करते हैं। इनसे स्वास्थ्य को भी हानि होती है, जैसे सत्यानाशी के बीज से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। खरपतवार उन्मूलन में काफ़ी खर्च भी करना पड़ता है। मृदा में जल अत्यंत आवश्यकी होता है, क्योंकि पौधे अपना भोजन घोल के रूप में लेते हैं। यदि मृदा में जल नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको शोषित करने के लिए उचित घोल नहीं बन पाएगा। गर्मी की जुताई के बाद तेज धूप में मिट्टी के सूख जाने से उसकी जल शोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह वर्षा का अधिक से अधिक जल शोषित करती है, जो फसलों के लिए लाभदायक रहता है। गर्मी की जुताई से मृदा के कणों की बनावट भी सुधरती है तथा कणों का लगाव भी सुधरता है, क्योंकि जुताई में मृदा को स्थानांतरित किया जाता है, जिसके कारण कण अपनी स्थिति बदल लेते हैं तथा अच्छी स्थिति में आने की कोशिश करते हैं। मृदा में कणों की बनावट तथा सजावट का पौधों की वृद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसी तरह जुताई से मृदा में वायु संचार भी बढ़ता है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। उचित वायु संचार से पौधों की जड़ों तथा लाभदायक सूक्ष्म जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और हानिकारक गैसें बाहर निकलती रहती हैं। पौधों की जड़ों का फैलना व बढ़ना भी भूमि में उचित वायु संचार पर ही निर्भर करता है।

0: बिना जुते खेत की मिट्टी काफ़ी कड़ी रहती है और उसकी जल अवशोषण क्षमता भी काफ़ी कम होती है। जब वर्षा होती है तो उसमें पानी अच्छी प्रकार प्रवेश नहीं कर पाता और ढाल की तरफ बहने लगता है। इसके साथ मिट्टी के बहुत से कण भी बह जाते हैं। मिट्टी की ऊपर की हल्की सी परत जो कि बहुत उपजाऊ होती है तथा वर्षों के बाद बन पाती है, पानी के साथ बह जाती है। जुताई करने से मिट्टी मुलायम हो जाती है तथा उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाने से वर्षा का पानी उसमें सुगमता से प्रवेश कर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। अंत में मैं किसान भाइयों को गर्मी की जुताई से होने वाले मुख्य लाभों के बारे में जानकारी कराना चाहूँगा। जैसे गर्मी की जुताई से ज़मीन के हानिकारक जीवाणु ऊपर आकर कड़ी धूप से नष्ट हो जाते हैं और इनकी रोकथाम में रसायनों का प्रयोग बहुत कम करना पड़ता है, साथ ही रसायनों से शरीर को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। गर्मी की जुताई से तेज़ धूप के कारण ज़्यादातर खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जिससे इन पर अतिरिक्त व्यय नहीं करना होता है और उसमें कमी आती है। फिर गर्मी की जुताई से मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाती है, जिससे उसकी जल शोषण क्षमता भी बढ़ जाती है तथा वह वर्षा के पानी को अधिक मात्रा में शोषित करती है। इससे प्रकाश और वायु का भी संचार अच्छा होता है, जिससे लाभदायक सूक्ष्म जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और उनका विकास अच्छा होता है। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ने से मिट्टी का कटाव कम होता है तथा भूमि उपजाऊ बनी रहती है और अंत में भूमि की दशा में भी सुधार होता है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी गर्मी की जुताई से लाभ के विषय में डॉक्टर महेंद्र कटियार की वार्ता। मीडियम में 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार, और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः तेलङ्गाणाराज्ये प्रायः चतुश्शतोत्तरनवसहस्रकोटिरूप्यकाणाम् आधारभूतसंरचनानाम् औद्योगिकपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानीन्तन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनाल इत्यस्य

0: मिश्रणे अपूर्व प्रगति ही अभवत।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य पञ्चसप्ततिः वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मंडल दंडाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षी अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त विश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं गृहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
2: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा

0: को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirling, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will arrive Somnath from Jamnagar by air. After landing at the helipad, he will greet the public during a roadshow up to Veer Hamirji Goyal Circle. Afterward, the Prime Minister will pay floral tribute to statue of Sardar Vallabhbhai Patel, who envisioned the reconstruction of the Somnath Temple. Mr. Modi will perform special prayers at the temple and will also conduct the Kumbhabhishek ceremony and flag hoisting on the temple spire. On this occasion, the Indian Air Force Surya Kiran Aerobatic Team will present a thrilling air show in the sky of Somnath. After the worship rituals, the Prime Minister will also address a public meeting. He will release a special commemorative postal stamp and a special 75 rupees commemorative coin. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
1: Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar

में दाने डालने की। इन्हें देखना चाहिए और उससे बचना चाहिए। कान में छोटे कीड़े घुस जाते हैं और उनके कारण भी भयंकर दर्द हो सकता है। कान में चोट लगने से, जैसे तमाचा लगने से, कुरेदने से, कुरेदते समय किसी का हाथ ऊपर से लग जाए। अक्सर हम देखते हैं कि कोई बड़ा अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को चाटा मार देता है और कान पर लग जाता है, उससे बाद में कान का पर्दा फट भी सकता है, दर्द तो होगा ही। कान में इन्फेक्शन बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा या फंगस द्वारा हो तो उससे भी दर्द होगा। इसके बाद हम लेते हैं पर्दे के रोग। पर्दा यदि फट जाए चोट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, अंदर से पस का दबाव उस पर पड़े, उससे दर्द हो सकता है।

0: को चाटा मार देता है और कान पर लग जाता है, उससे बाद में कान का पर्दा फट भी सकता है। दर्द तो होगा ही। कान में इन्फेक्शन बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा या फंगस द्वारा हो तो उससे भी दर्द होगा। इसके बाद हम लेते हैं पर्दे के रोग। पर्दा यदि फट जाए चोट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, अंदर से पस का दबाव उस पर पड़े उससे दर्द हो सकता है, कान को कुरेदने से दर्द हो सकता है। पर्दे के इन्फेक्शन जिसे मारिंजाइटिस कहते हैं, वह हो तो उससे भी दर्द होगा। इसके बाद आता मध्यकर्ण, जो अंतःकरण और बाहरीकरण के बीच में होता है। इसमें इन्फेक्शन होता है, उसे हम लोग अपनी भाषा में ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। यह इन्फेक्शन नाक व गले से के आपस में इन्फेक्शन के मिलने से प्राय होता है। अगर गले में नाक में इन्फेक्शन है तो वह कर्णकंठ नली द्वारा कान की तरफ आ जाता है। मध्यकर्ण में द्रव इकट्ठा होने से उससे भी दर्द हो सकता है। उसके अंदर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनके इन्फेक्शन से दर्द हो सकता है। और बार बार इन्फेक्शन होने से, बार बार दर्द होने से कभी कभी पर्दा फट जाता है और उससे भी दर्द हो सकता है। एक और घटना हमारे सामने आती है, कान में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन्हें मैगट्स हम बोलते हैं, और उनके कुरेदने से, उनकी हड्डी काटने से रक्त भी आता है और दर्द भी होता है। इसके बाद साइनोसाइटिस हो, राइनाइटिस हो, नाक के कष्ट हैं, गला खराब है, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, इनकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। अंतःकरण होता है सबसे अंदरी हिस्सा, जो दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। उसमें कोई सूजन हो, जिसे हम लेबरिंथाइटिस कहते हैं, बहुत सामान्य नहीं है, इसकी वजह से भी कान में दर्द होगा। एक कान के पीछे हड्डी होती है जिसे मैस्टॉइड हड्डी कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो, सूजन हो, उसके कारण भी भीषण दर्द होता है। एक होता है कान के पास ही टीएम ज्वाइंट, जो हमारी जो दांतों वाली पंक्ति है और ऊपर सिर के अंदर जो इस मैस्टॉइड हड्डी, दोनों के बीच जोड़ होता है जिससे हमारा जबड़ा चलता है, उस जोड़ में अगर दर्द हो तो भी कान में दर्द महसूस होता है। अगर टॉन्सिलाइटिस है, फरेंजाइटिस है, उनके कारण भी कान में दर्द हो सकता है। कभी कभी टॉन्सिल में या जीभ के पिछले हिस्से में कैंसर हो जाता है और दर्द कान में हुआ करता है। उससे दांतों की वजह से भी दर्द होते हैं, वो भी हम कान में महसूस कर सकते हैं। कभी कभी नसों के दर्द होते हैं, जिसे सर्वाइकल पेन हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। लक्षण जैसे जैसे दर्द होते हैं, जैसे मैं हमने अभी अलग अलग हिस्सों के हिसाब से यहाँ पर वर्गीकृत किया है, उसी हिसाब से उसके लक्षण होते हैं। उपचार हेतु सबसे पहले तो हम दर्द की दवा देंगे, उसके बाद कारण जैसा होगा, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, और कोई चीज़ फंस गई है, कोई कीड़ा पड़ गया है, कोई बाहरी चीज़ आके पड़ गई है, उसे निकालने की व्यवस्था करेंगे।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी कान के दर्द के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर सत्यमित्र की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देशगान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवेश्वर में देश का नाम। आपकी सेवा में हम
1: कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रभास पाटन में धर्म, भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संग

0: कम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्य से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सुबह 9 बजे सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल लखनऊ में कहा कि राज्य को बेहतर बिजली ढांचा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि सरकार ने 165 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए हैं, 59 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और 26,000 किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृत की सराहना पर केंद्रित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ

0: मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध तथा कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
1: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 1,92,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानियों ने राज्य में 14 मई तक एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.5 मीटर अर्थात 1530 के हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित रास्ता संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 17 मई को होने जा रही है। इसमें जेईई मेन में सफल और चयनित अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। इस वर्ष जेईई एडवांस का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी रुड़की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में आयोजित करने जा रहा है। इसमें शामिल होने वाले

अभ्यर्थियों को सिटी स्लिपर जारी कर दिया गया है। अब प्रवेश पत्र भी आज डाउनलोड किए जा सकेंगे। आईआईटी रुड़की जेईई एडवांस के प्रवेश पत्र आज सुबह 10 बजे जारी कर देगा, जिसे अभ्यर्थी 17 मई दोपहर 2:30 बजे तक डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थी और 40% से कम दिव्यांगता वाले या ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में परेशानी है, उनके लिए स्क्राइब पोर्टल 16 मई 2026 को सक्रिय होगा। इस परीक्षा का आयोजन 17 मई को 2 शिफ्टों में होगा। प्रश्न पत्र एक सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे की पाली में होगा और वहीं प्रश्न पत्र दो की परीक्षा का आयोजन दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। रिस्पांस शीट 21 मई को उपलब्ध होगी। इसी तरह प्रोविजनल आंसर की 25 मई को जारी कर दी जाएगी और परिणाम 1 जून को घोषित किए जाएंगे। जेईई एडवांस से प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न आईआईएम और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में सीट और पाठ्यक्रम आवंटित किए जाएंगे। श्रोताओं, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर उस पर अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर, आवेदन संख्या, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, जन्मतिथि, श्रेणी, परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय जैसी सभी जानकारियां अंकित होंगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को सुझाव है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करते ही उसकी सारी जानकारी जांच लें, यानी आपकी जो भी उसमें डिटेल्स है उसे अच्छी तरह से चेक कर लें। इसके लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाना होगा। वहां रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद उन्हें डाउनलोड एडमिट कार्ड या सिटी स्लिप लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वो अपना प्रवेश पत्र और सिटी स्लिप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया थी और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी परीक्षा का आयोजन 17 मई को 2 शिफ्टों में होगा।

श्रोताओं, उत्तर भारत के पुराने शिक्षण संस्थान में से एक 203 वर्ष पुराने आगरा कॉलेज में स्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का पहला विधि स्नातक देने वाला आगरा कॉलेज से छात्र बीए करना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीबीए बीसीए करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती गई है। विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद छात्र कॉलेज की वेबसाइट पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्र 2026-27 में स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बायोटेक, बीबीए, बीसीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद कॉलेज की वेबसाइट आगरा कॉलेज agra.org.in पर छात्र स्नातक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पुनः हम आपको बता दें, इसके लिए वेबसाइट आगरा कॉलेज agra.org.in इस पर छात्र स्नातक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबंध कॉलेजों में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके लिए वेबसाइट dbrau.aac.in पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण करना होगा। पूरा नोट कर ले, वेबसाइट dbrau.aac.in। पंजीकरण करने पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी, जिसमें छात्रों का विस्तृत ब्यौरा दर्ज होगा। छात्र देश के किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करे, उसका एबीसी नंबर कभी नहीं बदलेगा। इसके लिए ₹400 शुल्क है। समर्थ पर पंजीकरण के दौरान जिस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, उसका नाम और पाठ्यक्रम भी आपको दर्ज करना होगा। तो इस तरह

श्योपुर जिले के सभी स्कूलों में 2 से 4 दिन के बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएंगे, लेकिन गर्मी की ये छुट्टियां सिर्फ होमवर्क और खेलकूद तक सीमित नहीं रहेंगी। बदलते माहौल, समय और नई शिक्षा नीति के बीच शहर के स्कूलों ने इस बार छुट्टियों के ठीक बाद ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की तैयारी कर ली है, जिसे नए विषय के रूप में कौशल बोध थीम से भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि बच्चों को सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं, जीवन में जरूरी व्यवहारिक तकनीकी और सामाजिक कौशल भी सिखाना है। यही वजह है कि इस बार आगरा के स्कूलों में आयोजित होने वाले इन ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, वैचारिक गणित और भारतीय भाषाओं के साथ साथ संचार कौशल, सिविक सेंस, बागवानी, रसोई कौशल और आत्मनिर्भरता के छोटे छोटे व्यवहारिक पाठ भी सीख सकेंगे। इन शिविरों का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब फोकस सिर्फ मनोरंजन या खेल गतिविधियों पर नहीं, जीवन कौशल शिक्षा पर भी होगा। इन्हें प्रारंभ करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को कौशल बोध से युक्त कराना है, क्योंकि भविष्य की प्रतिस्पर्धा में वही विद्यार्थी आगे होंगे जिनके पास तकनीकी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक समझ और सामाजिक दक्षता भी होगी। तो एक और जहां निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करने की तैयारी है, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में सीखो और समझो मॉडल पर ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किया जाएगा। जिले के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 13 से 19 मई तक चलने वाले शिविरों में बच्चों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। विद्यार्थी अपनी पसंद की भाषा सीखेंगे और मातृभाषा के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं से भी परिचित होंगे। इसमें संवाद, कहानी लेखन, कविता पाठ और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में भाषाई और सामाजिक समझ विकसित करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो इस तरह स्कूलों में अब लगेगी कौशल बोध की पाठशाला।

तो श्रोताओं, इस तरह स्कूलों में अब लगेगी कौशल बोध की पाठशाला, जिसमें बच्चे मस्ती के साथ साथ यानी कि खेल कूद के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ कौशल बोध की चीज़ें भी सीख सकेंगी, जो आगे चलकर उनके भविष्य में लाभदायक होंगी। इतना ही नहीं श्रोताओं, परीक्षार्थियों के लिए कुछ और भी सोचना है, तो चलिए आपको उसकी जानकारी दे दें। देश भर के विश्वविद्यालयों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET UG का आयोजन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा आज से शुरू होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। NTA की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षा 21 दिनों में 35 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस बार सबसे अधिक छात्र अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, गणित और जीव विज्ञान से जुड़े विषयों के लिए परीक्षा देंगे। आज ही के दिन यानी कि 11 मई को परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट में अंग्रेजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा होगी और दूसरी शिफ्ट में अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, समाजशास्त्र समेत अन्य विषय शामिल रहेंगे। तो NTA ने छात्रों को हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी है। सामान्य जूते, चप्पल या कम हील वाले सैंडल ही मान्य होंगे, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखकर ही अपने परीक्षा केंद्र पर जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो।

श्रोताओ, आगरा रेल मंडल के स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट बनने के लिए आप आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ श्रोताओ, आगरा मंडल के 22 रेलवे स्टेशनों की 23 लोकेशनों पर अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से टिकट वितरण के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्त किए जाने हैं। एजेंट को 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी मंडल वाणिज्य कार्यालय आगरा से या उत्तर मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट ncr.indianrailways.gov.in से आवेदन पत्र ले सकते हैं और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई सुबह 11 बजे तक है। तो पुनः नोट कर लीजिए और जल्दी से आवेदन कर दीजिए। आवेदन कहां पर करना है आपको? indianrailways.gov.in पर। जैसा कि हमने आपको बताया, अंतिम तिथि 15 मई है और सुबह 11 बजे तक, यानी कि 15 मई को सुबह 11 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।

जो लोग रेल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सूचना है। सुबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सुबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। इसके साथ साथ मई में कई ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम स्पेशल, गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मल्होर, ऐशबाग और मानक नगर होकर संचालित होगी।

श्रोताओं, इसके साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। कानपुर सेंट्रल मदुरई स्पेशल ट्रेन 27 मई तक और मदुरई से 29 मई तक चलेगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में ही संचालित होगी।

स्वगणा फॉर्म भरने में गलती हो जाए तो घबराए नहीं, घर बैठे गलती सुधारने का मौका मिलेगा। सिर्फ आपके पास स्वगणना आईडी नंबर होना चाहिए जिसके माध्यम से प्रगणक आपके फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। श्रोता, स्वगणना के लिए 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा। स्वगणना फॉर्म सिर्फ घर का मुखिया के नाम से भरा जाएगा। फॉर्म में घर का फर्श, छत, दीवार से लेकर मोटर कार और इंटरनेट साधन का ब्यौरा सहित कई सवालों के जवाब देने होंगे। यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य स्वगणना फॉर्म भरता है तो वो मुखिया के नाम से भर सकता है। स्वगणना के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है। नंबर पर आए ओटीपी पर ही सवालों का फॉर्म खुलेगा। 22 मई से जनगणना के तहत डोर टू डोर सर्वे भी शुरू होगा। 10,000 से अधिक प्रगणक और सुपरवाइजर घर जाकर स्वगणना फॉर्म में भरी सूचनाओं का सत्यापन करेंगे।

साथियों, भारत में हर साल आज ही के दिन 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये दिवस भारत की सफलता और उन तकनीकी नवाचारों का भी प्रतीक है जिन्होंने देश के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1999 से मनाया जा रहा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु हथियारों के सफल परीक्षण की स्मृति में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ किया और यह प्रदर्शित किया कि भारत अब परमाणु स्वतंत्रता प्राप्त एक परमाणु शक्ति बन चुका है। इस उपलब्धि ने अंततः भारत को कुछ चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल कर दिया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने भारत की नवोन्मेषी

तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने और समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस केवल परमाणु उपलब्धि की याद दिलाने तक सीमित नहीं है, ये भारत की व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार यात्रा का प्रतीक है। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का सम्मान करना और विभिन्न उद्योगों में प्रौद्योगिकी और नवाचार के महत्व को उजागर करना भी है। धीरे धीरे ये उत्सव परमाणु उपलब्धियों से आगे बढ़कर जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण, सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी तक विस्तारित हो चुका है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड हर साल एक विषय घोषित करता है जो नवीनतम विकास और भविष्य की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इससे पहले के विषयों में स्थिरता, डिजिटल सशक्तिकरण और हरित प्रौद्योगिकी शामिल है, जो भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक दायित्वों के अनुरूप है। साथ ही पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण भारत की तकनीकी विकास का एक कदम है। ये दिन अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों का भी उत्सव है। स्वदेशी मिसाइलों की स्थापना, यानी कि मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसके तहत अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का निर्माण हुआ। हमने अंतरिक्ष अन्वेषण में पहले ही कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, जिनमें मुख्य रूप से इसरो का मंगलयान मिशन और चंद्रयान परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। हमने सटीक खेती और अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों जैसे कि कृषि प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिली है। इसके साथ साथ हमने स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी में कई तरह से प्रगति की है, जैसे कि हमने टीके बनाना और डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी विकसित किए। ये उपलब्धियां न केवल घरेलू विकास के हिस्से के रूप में बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए भी अनुसंधान का उपयोग करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को सक्रिय रूप देने से समर्थन देती है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और निगमों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और सम्मान भी दिया जाता है। ये दिवस इस बात की याद दिलाता है कि प्रौद्योगिकी केवल प्रगति के बारे में नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण के बारे में है, जो भारत को अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक आत्मनिर्भर बनाती है।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओ, इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी

0: और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का, विभागों का, अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला स्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े।

0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
2: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
2: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-01-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है।

0: थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजों में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Dham Hostel in Vadodara. Assam Governor invites Hemant Biswa Sarma to form new government in the state. Uttarakhand administration urges Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain alert and travel safely amid adverse weather conditions. US President Donald Trump rejects Iranian response to US peace proposal as totally unacceptable. And in football, India to take on host China in crucial quarterfinal match in AFC Under 17 Women's Asian Cup in Suzhou today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a gathering in Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
3: Ek zamana tha jab sankat aata tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai lekin desh hit mein humko ye tay karna padega ki saal bhar tak घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
2: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to

0: to take oath as Assam chief minister tomorrow, writes the Hindu. The same paper also quotes the new Bengal CM Suvendu Adhikari in its headline, Era of Trust Starts, says Suvendu ahead of cabinet meet. PM Modi urges citizens to cut fuel use, revive COVID era measures, writes the Pioneer. The Statesman reports, six new ministers inducted into Chief Minister Yogi ministry in UP, two others promoted. The Hindu, in an editorial titled Cost to Access, writes that the cost of accessing medical care remains high. The Union Labour Ministry has announced that it will provide a free annual health checkup to workers aged 40 years or more. Commendable though the initiative is, its success is not guaranteed. At present, only 31 crore of 94 crore workers are on the e-Shram portal, whose integration with ESIC is still in its early stages in many states. The program does not address the opportunity costs of accessing healthcare, forcing workers to continue contending with lost wages. And finally, Indian women's recurve team stuns China at the Archery World Cup to win gold in Shanghai, writes the Statesman. A proud moment indeed for Indian sports. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Bham Hostel in Vadodara. Assam Governor invites Hemant Biswa Sarma to form new government in the state. Uttarakhand administration urges Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain alert and travel safely amid adverse weather conditions. US President Donald Trump rejects Iranian response to US peace proposal as totally unacceptable. And in football, India to take on host China in crucial quarterfinal match in AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़रे मुबादला का तहफ्फुज़ करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व सरमा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तहत ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाओ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की ज़रे मुबादला की बचत करें। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने के लिए कहा। यह राजधानी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है।
3: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा

0: को बचाना होगा।
1: वजीर आजम ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें, क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इक्तसादी दबाव का सामना है। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से भी कहा है कि वो खुर्दनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हेसार कम करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। जनाब मोदी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, कुंभाभिषेक रस्म अदा करेंगे और बाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामनगर से सोमनाथ फजाई रास्ते से पहुंचेंगे। वो हेलीपैड पहुंचने के बाद एक रोड शो के दौरान आवाम को मुबारकबाद भी देंगे। इस रोड शो का इनेकाद वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक किया गया है। इसके बाद वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर गुलाय अकीदत नजर करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को नए सिरे से तामीर करने का तसव्वुर पेश किया था। इस मौके पर भारतीय फजाइया की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण सोमनाथ की फजा में एक सनसनीखेज एयर शो पेश करेगी। इस मौके पर वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वो एक खसूसी यादगारी डाक टिकट और 75 रुपए का एक खसूसी यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सोमनाथ से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्बार।
1: आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में एनडीए की लगातार तीसरी मुद्दत कार के लिए राह हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया है। बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए कानून साज पार्टी का मुत्तफिका तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब शर्मा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बाजाब्ता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ जनाब शर्मा और वुजरा की कौंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब खनपाड़ा के वेटरिनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन के अलावा दीगर मोजजीन इस में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में वजीरों की कौंसिल की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: कल हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद हो गई, जिसके बाद अब मगरबी बंगाल की नई सरकार अपनी इंतजामिया का सफर शुरू करने को तैयार है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में अपनी पहली काबीना मीटिंग की सदारत करेंगे। इम्कान है कि मीटिंग में उन 5 नए वजीरों के कलमदान मुख्तस किए जाएं, जिन्हें कल हलफ दिलाया गया है। मुमकिन है कि दीगर महकमों के बारे में भी कोई फैसला किया जाए। जराए ने कहा है कि बीजेपी के इंतखाबी वादे एजेंडा में सरे फहरिस्त रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, सेहत स्कीम और अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया जाना और रियासती मुलाजिमीन के लिए 7वें तनख्वाह कमीशन पर अमल दरामद शामिल है। आज वजीर आला इंतजामिया के कामकाज की रफ्तार और नज्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीज, जिला मजिस्ट्रेट्स और सीनियर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के 9 मुंतखबा कानून साजरकान से भी कहा गया है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करें। कोलकाता से संदीपन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: इसी दौरान कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिद अपोजिशन महाज की टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की अपील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएं बाजू ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा है कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाए। कांग्रेस तर्जमान सौम्य आईच राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएं बाजू के ग्रुपों के जिक्र और 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओ नवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरका परस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी स्वपन बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ममता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने उन्हें मनमाने तौर पर काम करने वाली और गैर जमहूरी शख्सियत करार दिया है।

0: सीपीआई एमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में नौ मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एम वी करुपैया नए मुंतखब एमएलए को हलफ दिलाएंगे। अरकान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित कर आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदाम और इख्तिराई सलाहियतों को बरूएकार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत अब काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मोर्गन स्टेनले की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की जानिब मुंतकिली बैरूनी इनेसार कम करने में मदद फराहम करेगी। ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनसिर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन दो गुना होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसी तरह सोलर सेल की सलाहियत भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रा के यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो पहाड़ी रियासत में मौसम के खराब हालात के पेशेनजर मोहतात रहें और महफूज तरीके से सफर करें। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन पहाड़ी खित्ते में कल और परसों बारिश और खराब मौसम के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अकीदतमंदों और सयाहों से अपील की है कि वो अपने सफर के दौरान मौसम से मुतालिक ताजा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और इंतहाई एहतियात के साथ अपनी यात्रा की मंसूबाबंदी करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताजा तरीन अमन तजवीज को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया है। अलबत्ता मगरबी एशिया में कई महीने से जारी महाजाराई के खात्मे के लिए एक मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्होंने ईरान के जवाब को पढ़ा है जो उनके बकौल ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से आया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: इससे पहले ईरान ने कहा था कि उसने अमरीका की ताजा तरीन तजवीज के तहत जिसका मकसद मगरबी एशिया में तनाजे को खत्म करना है अपना जवाब भेज दिया है। ये जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है जो ईरान और अमरीका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की इरना खबर एजेंसी ने कहा कि ईरान के जवाब में तनाजे के खात्मे और अबनाए हुरमुज में समंदरी इलाके की सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है जो तेल ले जाने वाले जहाजों का एक अहम आलमी रास्ता है। ईरान के सदर मसूद पेजिशियान ने कहा कि मगरिब के साथ मुजाकरात को हथियार डाल देने या फौज वापस बुलाने के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी दौरान इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की तरफ से जवाब दिए जाने के बाद कल रात सदर ट्रंप से बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम के जखीरों को खत्म करने की जरूरत से इत्तेफाक किया जो मुजाकरात का एक अहम मौजू है। सदर ट्रंप ने फौजी सूरत हाल का जिक्र करते हुए ईरान को फौजी तौर पर शिकस्त खुर्दा करार दिया और दावा किया कि ईरान की दिफाई और हमला करने की सलाहियतों को मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका ईरान के ताकतवर यूरेनियम जखीरे पर करीबी नजर रख रहा है। न्यूज डेस्क से आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: फुटबॉल में आज सूचाऊ के मकाम पर 17 साल की उम्र तक के खवातीन एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इस मैच में कामयाबी से भारत 17 साल की उम्र तक की खवातीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा जो खवातीन फुटबॉल में मेरिट की बुनियाद पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली तारीखी रसाई होगी। फुटबॉल में भारत को कल जद्दा में 17 साल की उम्र तक के एएफसी एशियन कप के ग्रुप डी के अपने दूसरे मैच में उज्बेकिस्तान

0: पाकिस्तान के हाथों 0 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत की 17 साल की उम्र तक के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवाम पेट्रोल डीजल और गैस का इस्तेमाल किफायत शियारी से करें। वजीर आजम ने ये बात हैदराबाद में 5,400 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की तकरीब में कही। तमिलनाडु में नौ मुंतखब वजीर आला और टीवीके के सरबराह विजय की हलफबरदारी से मुतालिक खबर भी अखबारों में मुश्तरक तौर से नुमाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, टीवीके चीफ के अलावा 9 दीगर अराकीन असेंबली की भी हलफबरदारी, कई बड़ी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। यूपी काबीना में तौसी से मुतालिक खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि यूपी काबीना में तौसी, 6 नए वुजरा शामिल, 2 नए वुजरा का प्रमोशन। एक बार फिर बतौर वजीर आला आसाम हिमंत बिस्वा सरमा 12 मई को हलफ लेंगे, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
0: और आखिर में खास खास खबर, एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफ़ करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हिमंत बिस्वा सरमा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का आरंभिक गीत है कुमार सानू और अलका याग्निक के जुगल स्वरों में। गीतकार है जावेद अख्तर, संगीतकार है राजेश रोशन। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा है। साथियों, कार्यक्रम का ये गीत है चमत्कार फिल्म से, स्वर है कुमार सानू और अलका याग्निक की। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र और प्रस्तुत किया जा रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। और अब डीजे सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है क्रिमिनल, स्वर एक बार फिर से कुमार सानू और अलका याग्निक के हैं। गीतकार है इंदिवर, संगीतकार है एमएम करीब।

एमएम करीम के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना स्वर था अलका याग्निक का, फिल्म थी जख्म। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार है महबूब, संगीतकार है इस्माइल दरबार, फिल्म का नाम है खम दिल दे चुकी सनम।

हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और अम्बेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
1: प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने विगत 5 मई को बांदा पहुंचकर स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि
2: जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये कल के भारत के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, सजाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और मैं भी अपील करता हूँ, डबल इंजन की सरकार में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो अंतिम गाँव तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, तो इस प्रदेश में रहने वाले शिक्षा मित्र भाई भी अछूते न रहे।
1: वहीं सरकार द्वारा बढ़ाए गए मानदेय को लेकर जनपद के शिक्षा मित्रों में खुशी है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों की समस्या को समझते हुए 8,000 रुपए मानदेय बढ़ाने के साथ ही 5,00,000 की कैशलेस सुविधा भी दी है, जिसको लेकर शिक्षा मित्र के मन में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में इस समय पारे का कहर चरम पर है। आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वैसे तो अप्रैल माह के बाद ही यहां पारा 45 के ऊपर पहुंचता था, लेकिन इस बार अप्रैल से ही अत्यधिक गर्मी की शुरुआत हो गई थी, जिसके चलते लोग घरों पर दुबक कर बैठ गए हैं और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत मजबूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से बांदा और आसपास के क्षेत्रों बारिश होने की वजह से तापमान में कुछ कमी आई है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। बीते साल भी प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा बांदा जनपद का ही था। वहीं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, खासकर बच्चे गर्मी की चपेट में अधिक आ रहे हैं। जनपद में गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। बांदा के जिला अधिकारी अमिता शेरी ने बताया कि
3: हीट वेव में जिला प्रशासन पूरी अपनी कमर कसे हुए है। पिछले कुछ समय से बांदा जिला प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला उभर कर आ रहा है। लोगों ने जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अपनी टीम्स तैयार की हैं जो उनको टेक केयर करेंगी। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स हम लोगों ने चेंज किए हैं, शहर के अंदर भी शेड और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। बहुत जरूरी हो तो ही निकलें और अपने को कवर करके लाइट क्लोथ्स में तब वहां पर जाएं।
1: जनपद में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में

0: स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी व जनपद की जिला मलेरिया अधिकारी पूजा हिरवार ने बताया कि संचारी रोग अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है। यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया। इस अभियान में संचारी रोग से संबंधित जिसमें मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के साथ ही वायु जनित रोग भी आते हैं, इन रोगों से बचाव के लिए इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। बांदा में साइबर अपराधियों द्वारा एक बड़ा घोटाला करने की साजिश रची गई, लेकिन बैंक मैनेजर की सतर्कता से मामला पकड़ में आ गया और इन अपराधियों की साजिश नाकाम हो गई। साइबर अपराधियों ने मुख्य विकास अधिकारी के खाते से नेट बैंकिंग के जरिए 1,68,00,000 रुपए निकालने का प्रयास किया। साइबर ठग ने अपने को DRDA का परियोजना निदेशक बताते हुए बैंक मैनेजर को मुख्य विकास अधिकारी के पैसे निकालने के लिए फोन किया। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति बैंक की शाखा में पहुंचा और खुद को विभागीय कर्मचारी बताते हुए खाते से संबंधित दस्तावेज जमा किए, जिनमें CDO समेत कई अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई थी। शाखा प्रबंधक को कागजात और प्रक्रिया पर संदेह हुआ तो उन्होंने गहन जांच शुरू की, जिसमें सभी दस्तावेज फर्जी लगे, जिसके बाद तत्काल शाखा प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस के बैंक पहुंचने से पहले ही शातिर अपराधी वहां से फरार हो गए। बाद में DRDA के परियोजना अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV की मदद से पहचान कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है।
1: जनपद बांदा ED DRDA से प्राप्त तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना बांदा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा ED DRDA के द्वारा एक संचालित खाते को इंटरनेट बैंक लेकर के जिस खाते में पैसा निकालने का दुष्प्रयास किया गया है। ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों की जागरूकता और बैंक के अधिकारियों की सतर्कता तथा साइबर पुलिस के सहयोग से जो खाते में लगभग 1,68,00,000 रुपए था उसको बचाया गया है। विवेचना की जा रही, साक्ष्य संकलन कर और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके विवेचना का विधि
2: बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
3: अंबेडकर नगर में ईसा प्रिया ने जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ईसा प्रिया 2016 बैच की IAS हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों से पर्चे प्राप्त किया और अन्य आवश्यक जानकारी ली। नवागत जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन, शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी जवाबदेह एवं जन केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं IPS अफसर प्राची सिंह ने अंबेडकर नगर के SP पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के सफल संचालन के दृष्टिगत जनपद अंबेडकर नगर में स्वगणना अभियान को व्यापक रूप से संचालित किए जाने के लिए जिलाधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय समिति तथा विभागवार नामित प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व आमजन की सुविधा के लिए 7 मई 2021 से मई 2026 तक 15 दिवसीय स्वगणना अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभिन्न वर्गों तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभागवार निर्धारित रणनीति के अनुसार व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को डिजिटल स्वगणना से जोड़ते हुए अभियान को सफल बनाया जाए। स्वगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण में नागरिकों को https://sc.census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चयन करते हुए कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करना होगा। इसके पश्चात परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज कर परिवार पंजीकरण किया जाएगा। ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकेगा तथा पंजीकरण के बाद परिवार के मुखिया का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। द्वितीय चरण में नागरिक अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिले, गांव, नगर एवं स्थानीय क्षेत्र का विवरण भरना होगा तथा मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना होगा। लाल मार्कर को सही स्थान पर स्थापित कर निवास की पुष्टि की जाएगी, जिससे आवास की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके। तृतीय चरण में नागरिकों को जनगणना प्रश्नावली भरनी होगी। प्रश्नावली में मकान सूचीकरण एवं परिवार संबंधी आवश्यक जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पोर्टल पर उपलब्ध आवश्यक सूचना एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQS की सहायता से प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। जानकारी भरने के बाद पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दर्ज विवरण की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जा सकेंगे। पूर्ण संतुष्टि के बाद अंतिम प्रस्तुतिकरण फाइनल सबमिशन करना होगा। अंतिम प्रस्तुतिकरण के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयों में स्वगणना हेल्प डेस्क भी बनाए जाने के निर्देश दिए।
4: जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक

0: मई से लेके 21 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त जो इस जनपद के गणमान्य लोग हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है, जो माननीय गण है उनसे भी अनुरोध किया गया है, और जितने भी यहाँ अधिकारी हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, उन सबसे अनुरोध किया गया है कि वो ये इंश्योर करें कि समस्त लोग अपने सेल्फ एन्यूमरेशन को सेंसस की जो वेबसाइट है उस पे उसको फीड करके अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कराएं। इसको हम लोग एक व्यापक अभियान के रूप में चलाएंगे और उसके बाद 22 तारीख से लेकर आगे फिर उसका एन्यूमरेटर्स के द्वारा जनगणना की कार्रवाई की जाएगी। समस्त कार्यालय इंक्लूडिंग कलेक्ट्रेट एक सेल्फ एन्यूमरेशन हेल्प डेस्क बना लें, जिसमें जो लोग ट्रेन किए गए हैं एन्यूमरेशन कराने के लिए उनके द्वारा उस कार्यालय के समस्त कर्मचारी अधिकारियों का सेल्फ एन्यूमरेशन कराने में सहयोग किया जाए और व्यापक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें प्रतिभाग किया जाए।
1: अम्बेडकर नगर में शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया। सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के बाद जिले में 1911 शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिला है। अम्बेडकर नगर में बाढ़ आपदा से प्रभावित ढंग से निपटने, जनहानि एवं धनहानि को न्यूनतम रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारियां, राहत प्रबंधन, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों तथा कटान रोधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अम्बेडकर नगर में बाढ़ से प्रभावित जिन किसानों की खरीफ की फसल नुकसान हुई थी उन्हें फसल बीमा का लाभ मिला है। जिले में लगभग 4000 ऐसे किसान हैं जिनका नुकसान हुआ था। फसल बीमा की तरफ से इन किसानों को 53,80,000 रुपए वितरित किया गया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल समाप्त हुई। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

शंकर जयकिशन की संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी की शब्द रचना, स्वर था मोहम्मद रफी का, फिल्म थी संगम। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त, स्वर है लता मंगेशकर का, गीतकार है मज्जू सुल्तानपुरी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

शदा फिल्म आमिला सजना से अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना। स्वर थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, फिल्म थी आन मिलो सजना। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें, 11:10 पर आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण की 75वीं सालगिरह के अवसर पर प्रभास पाटन सोमनाथ में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा को संबोधन का सजीव प्रसारण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं उदय भान सिंह की गाय कुछ लोकगीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उदयभान सिंह के गाए कुछ टूक गीत।

श्रोताओं, उदय भानसिंह के गाय इस लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

साथी अब लीजिए सुनिए फिल्म सोलह में इश्क से कैलाश खेर को। गीतकार है समीर, संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मयूरपुरी की शब्द रचना। स्वाति राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की फिल्म थी सिंग इज किंग। और अब लीजिए सुनिए सिंघम फिल्म से श्रेया घोषाल और अजय को। गीतकार है स्वानंद किरकिरे, संगीतकार है अजय अतुल।

श्रोताओं, श्रेया घोषाल और अजय के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। साथियों, जीवन एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकती है। कई चीजों में से अहम जो इसे सार्थक बनाती है वो है दूसरों के प्रति दयालु होना और खुद के प्रति भी दयालु होना और करुणा दिखाना, क्योंकि दयालुता बाधाओं को तोड़ सकती है, किसी व्यक्ति के पूरे भाव को बदल सकती है और एक चिरस्थायी रिश्ता बना सकती है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं शुभ्रा तलेगांवकर का राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल का गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपने सुनी कलाकार शुभ्रा तले गांवकर द्वारा राग विलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 11 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा की चमचमाती दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पर्दे पर दिखाई नहीं देते, लेकिन उन्हीं की कलम पर पूरी दुनिया की फिल्मी दुनिया की आत्मा टिकी होती है। जब भी फिल्मों की शानदार पटकथाओं, असरदार संवादों और दिल को छू लेने वाली कहानियों की बात होती है, तब एक नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है और वो नाम है सतीश भटनागर। जी हाँ श्रोताओं, पर सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, रेडियो की दुनिया में शब्दों का जादू बिखेरा और फिर फिल्मों में ऐसी कहानियां लिखी जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन आखिर वह इंसान था कौन? कैसे एक साधारण युवक ने संघर्षों की आग में तपकर हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण पटकथा लेखक बनने का सफर तय किया और क्यों उनकी लिखी कहानियों में हमेशा इंसानी रिश्तों की गर्माहट, दर्द और संवेदनाएं दिखाई देती थीं? आज इन्हीं सवालों के जवाब हमें उनकी जिंदगी के उन पन्नों में मिलते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

श्रुतो, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सतीश भटनागर के जीवन उस दौर में शुरू हुआ जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, देश में आजादी की लहर उठ रही थी और हर युवा के भीतर देशभक्ति की आग जल रही थी। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सतीश भटनागर केवल लेखक ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता प्राप्त की थी। उस समय देश के युवाओं के सामने दो रास्ते थे, एक अपने भविष्य की चिंता करना और दूसरा देश के लिए संघर्ष करना। सतीश भटनागर ने दूसरा रास्ता चुना। स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभवों ने उनके भीतर सामाजिक संवेदनशीलता पैदा की। उन्होंने समाज के दुख, गरीबी, संघर्ष और रिश्तों की सच्चाई को बहुत करीब से देखा और यही अनुभव बाद में उनकी फिल्मों की आत्मा बने। फिल्मों में आने से पहले सतीश भटनागर ने रेडियो जगत में भी महत्वपूर्ण काम किया। यह वह दौर था जब रेडियो लोगों के जीवन का सबसे बड़ा मनोरंजन का माध्यम था। आवाजें लोगों के दिलों तक पहुंचती थी और शब्द सीधे आत्मा को छूते थे। सतीश भटनागर की लेखनी में भी वही प्रभाव था। उनके लिखे कार्यक्रमों में सहजता, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई थी और यही कला आगे चलकर उनके संवाद लेखन की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आज के कलाकार बस यहीं तक। मिलेंगे कल एक नए कलाकार के साथ और तय करेंगे उनके जीवन का सफर। तब तक के लिए दीजिए हमें कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे सोमनाथ मंदिर।

पुनर्निर्माण की 75वीं सालगिरह के अवसर पर प्रभासपाटन सोमनाथ में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा को संबोधन का सजीव प्रसारण। यह प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister and the flypast by the Indian Air Force Suit.

0: Surya Kiran aerobatic team, and this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
1: Namaskar. आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक.

0: इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहां विशेष तीर्थ होते हैं वहां पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
0: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026.

0: As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honourable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे, वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
0: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.

विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु।

विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैव।

0: विष्णुरा विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस

0: जानकारी के लिए हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna, Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
0: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: नीलम, द टाइम फॉर द सूर्य किरण, द एरोबैटिक टीम, द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed! And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं, तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प

0: वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड incidentally, Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सके। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल

0: in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है, तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैसे है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
2: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र।

ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवलोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा।

0: उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर, तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है।
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है। अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है, भले ही वो छोटा मंदिर हो, लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं, उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल

0: अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए। तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में। तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस। सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया। तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: to the Sri Somnath Temple and he's participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं और पारंपरिक परिधान कृष्ण धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में ये पताकाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहनाकर अभिनंदन किया गया और साथ ही अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री Minister in Gujarat government, Shri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर
2: विश्वना सौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। વિશ્વના સૌથી અધિક લોકપ્રિય નેતા અને આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની નજર જે રાજ્યની ચૂંટણી પર હતી તે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત આસામ અને પોન્ડિચેરીમાં પણ વિકાસની રાજનીતિને મળેલા પ્રચંડ જન સમર્થનના શિલ્પી યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને સમગ્ર ગુજરાતની જનતા જનાર્દન વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। ભગવાન સોમનાથનું મંદિર સદીઓથી દેશની આસ્થા સંસ્કૃતિ અડગ સંકલ્પ

0: किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है. महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ. साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं. ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमिशम भजे लियते यत्र विश्वम. आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं. जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है. ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है. साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी. अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे. प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75

वर्ष हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, यह कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3
तीन परमाणु

हजारों परीक्षण किए, हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सो

अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विड़म्बना देखिए,

हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश

देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को

0: सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: श्रोता भी सुन रहे थे सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण की 75वीं सालगिरह के अवसर पर प्रभास पाटन सोमनाथ में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा को संबोधन का सजीव प्रसारण। ये प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर।
5: मोदी ने आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर मुनक्कदा सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत की। वजीर आजम ने प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि सोमनाथ महोत्सव सिर्फ तारीख का त्यौहार नहीं है, यह आइंदा 1000 साल के लिए भारत के लोगों के लिए तरगीब भी है। सोमनाथ अमृत महोत्सव मंदिर की तामीर 9 के बाद इसके इफ्तिताह के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाया जा रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक खसूसी महापूजा में शिरकत की। उसके बाद कुंभ

0: अभिषेक और ध्वजारोहण की तकरीबात हुई, जो मंदिर के तकद्दस और परचम कुशाई की रसूमात की अलामत है। हिंदुस्तानी फिजाइया के सूर्य किरण एक्रोबेटिक्स टीम ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर मुनाकिद सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान फिजाई करतब दिखाए। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रोड शो भी किया। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष संघवी भी मौजूद थे। इसी दौरान वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमनाथ संकल्प महोत्सव के अजीमुशान इनेकाद में वजीर आजम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी धाम में मुनाकिद ये इनेकाद भारत के सनातन रवायत है।
1: भगवान सोमनाथ महादेव का

0: यहीं से शुरू करते हैं, यानी सुबह से उठकर हम जो कामकाज करते हैं ना, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों की जिम्मेदारियां सम्मिलित हैं, सवाल ये है कि क्या जरूरत है रोज रोज झाड़ू लगाने या बर्तन कपड़े साफ करने की, या स्कूल बैग लगाने या होमवर्क करने की, या घर का पंखा रिपेयर कर और फ्रिज ठीक कराने की, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बिखरे घर को संभालना, सामानों को सही जगह रखना। लेकिन तब जवाब शायद ये होगा कि जीवन स्वच्छ व्यवस्थित रहे, और ये तो रोजाना की बात है ना, महत्वपूर्ण आवश्यकता भी तो है ये भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो सखियों, ये कॉमन सेंस ही सिविक सेंस भी है, और ये जो सारा देश है ना भैया, हमारा बहुत बड़ा सा घर है, जिसको हर गली चौराहे सड़क हाईवे पर मेंटेन करने के लिए ही सिविक सेंस की जरूरत पड़ती है, जो हमेशा एक चैलेंज भी बना रहता है। देखा जाए तो सिविक सेंस हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब घर की सफाई व्यवस्था कई बार हम लोग इस प्रेशर में भी करते हैं कि भाई इसका जो भी अच्छा बुरा परिणाम होगा भाई, वो तत्काल मिलेगा या अगले दिन या कभी भी हमारे ही ऊपर आने वाला है, और इसका ट्रांसफर भी हम किसी और पर तो नहीं कर सकते ना, जवाबदेही सामने से ही बनती है। सिविक सेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था स्वच्छता और सुरक्षा के बिना संभव नहीं, इसके बिना सार्वजनिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती, जो बड़े पैमाने पर जाकर राष्ट्र की छवि से भी जुड़ी है। सार्वजनिक स्वच्छता बड़ा मुद्दा है, इसलिए निश्चित स्थानों पर कूड़ा डालें, बाहर नहीं फेंकें, पान की थूक यहां वहां नहीं। और एक और इश्यू है कि भाई टॉयलेट तो प्रोवाइडेड है ना, लेकिन फिर भी पब्लिक टॉयलेट यूज ना करना बहुत बड़ी समस्या है। सार्वजनिक संपत्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इसका दुरुपयोग तो करना ही नहीं चाहिए, भाई हमारे टैक्स का पैसा भी तो है। निर्धारित स्थानों और यातायात से जुड़े भी बहुत से नियम होते हैं जिनका बिल्कुल पालन करना चाहिए। तेज गाड़ी चलाना या फिर बहुत तेज हॉर्न बजाना, ये भी तो गलत है ना, और लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना भी व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। दूसरों को सम्मान दीजिए अपने व्यवहार और सिविक सेंस से, बिल्कुल सोच कर देखिएगा। जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार हमें व्यवस्थित स्वच्छ समाज की ओर ले जाता है, इसे ही सिविक सेंस कहते हैं। तो आइए हम भी अपना सहयोग दें, क्योंकि सिविक सेंस हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए ही है। तो चलिए कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सखियों, हम सभी आधुनिक गैजेट से घिरे हुए हैं, आधुनिक गैजेट्स का जहां हमारे दैनिक कार्यों में बहुत सहयोग रहता है, बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन ना इनके दुष्प्रभाव भी हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, और इस विषय में सुनते हैं वार्ता आधुनिक गैजेट्स का दुष्प्रभाव शैली अग्रवाल से।
1: आज का समय तकनीकी का है, तकनीकी में रोज हो रहे परिवर्तनों ने गैजेट्स की दुनिया में धमाल मचाया हुआ है। बाजार में रोज ही नए नए अनेक खूबियों से सुसज्जित आकर्षक गैजेट्स की बारसी आई हुई है। इन सब ने हमारे जीवन को काफी प्रभावित किया है, खासकर युवाओं में इनको लेकर अधिक उत्साह है। इसलिए जब भी बाजार में कोई नई खूबियों वाला गैजेट आता है, तब सबसे पहले वह किसी ना किसी युवा के पास होता है। गैजेट एक छोटी तकनीकी वस्तु या उपकरण है जिसका एक विशेष कार्य है, जिसे नए रूप में ग्रहण किया जाता है। गैजेट्स को गिजमोस के नाम से भी जाना जाता है। आज के युग में स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे आधुनिक गैजेट्स की उपयोगिता को हम सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं। इनके प्रयोग से एक ओर जहां व्यक्ति के ज्ञान में बढ़ोतरी होने के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए नए दोस्त बनते हैं, वहीं दूसरी ओर इनका अधिक उपयोग व्यक्ति के स्वास्थ्य, स्मरण शक्ति तथा सृजनात्मकता पर विपरीत प्रभाव डालता है। आधुनिक गैजेट्स का लंबे समय तक प्रयोग बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों पर हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि स्मार्टफोन और टैबलेट का अधिक

नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर संसार प्रीति के साथ। तो सखियों, गर्मियों के दिन ना वैसे भी बड़े ही हुआ करते हैं और अब दोपहर आते आते ना घर के कामकाज भी पूरे हो ही जाते हैं, जिससे हम सखियां यूं रेडियो सुन सकती हैं और कामकाज से थोड़ा अलग कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर अपनी राय बना सकती हैं। तो चलिए आज

समय तक इस्तेमाल करने वाले बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है और कई बार तो स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि बच्चे को पेंसिल पकड़ने तक में दिक्कत होने लगती है। मोबाइल आदि में आजकल इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने के कारण लोग इन पर घंटों अपना समय बिताते हैं। कुछ तो आवश्यकता के अनुसार जरूरी कार्यों के लिए इस सुविधा का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ विभिन्न प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइटों से जुड़े होने के चलते कब अपना कीमती समय जो परिवार को देना चाहिए था बर्बाद कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। इसके कारण उनके पारिवारिक संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जहां आधुनिक तकनीक से बने गैजेट्स का उपयोग हमारे लिए लाभकारी साबित होता है, वहीं इनके असीमित उपयोग से इंसान अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारियों की चपेट में भी आ जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि मोबाइल फोन के लगातार प्रयोग से रेडियो तरंगें निकलती हैं, जो उपभोक्ता के मस्तिष्क कैंसर होने की वजह बनती हैं। अब जमाना पूरी तरह से स्मार्टफोन का आ गया है। खास बात यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी स्मार्टफोन से लैस नजर आते हैं, जबकि स्कूलों में आमतौर पर बच्चों को मोबाइल ले जाने की पाबंदी होती है। आजकल कम उम्र के बच्चे और युवा इन स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों पर पड़ने वाले गैजेट्स के कुछ बुरे प्रभावों पर चर्चा करते हैं। स्मार्टफोन के प्रयोग से बच्चों का काफी समय बर्बाद होता है। जो समय उन्हें पढ़ने लिखने में लगाना चाहिए वह सोशल साइट्स पर बीत जाता है। ज्यादातर समय वो दोस्तों के साथ चैटिंग में व्यतीत कर देते हैं। आज माता पिता इतने व्यस्त हो गए हैं कि यह संभव नहीं कि वे हर समय बच्चों पर नजर रख सकें। ऐसे में उनका बहक जाना आसान होता है। गैजेट यूज करने वाले बच्चों और किशोरों के गलत संपर्क में आने का खतरा ज्यादा होता है। सोशल साइट्स पर फेक आईडी बनाकर कई एंटी सोशल एलिमेंट सक्रिय रहते हैं, जिनके संपर्क में आकर बच्चा बहक सकता है, गलत रास्ते पर चल सकता है और माता पिता यह सोचकर कि हमारा बच्चा घर से बाहर निकलता ही नहीं है, कैसे बिगड़ सकता है, निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। सामान्य तौर पर पढ़ाई लिखाई के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ज्यादा समय गैजेट्स ही ले लेते हैं तो समय नहीं बच पाता और पढ़ने समझने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। कई बार बच्चे असली दुनिया से अलग किसी अनजानी दुनिया के बासी लगने लगते हैं। वो चीजों को गलत तरीके से समझने लगते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वे परीक्षाओं में भी गलत उत्तर लिखाते हैं। गैजेट्स का प्रयोग करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है। इसकी वजह यह है कि वे खेल कूद आदि से दूर होने लगते हैं, घर से बाहर निकलना उनका कम होता जाता है, खान पान की आदतें भी सही नहीं रहती, गैजेट्स का एडिक्ट हो जाने पर वे नींद भी पूरी नहीं कर पाते। गैजेट्स के असर से बच्चों में अनेक गलत आदतें भी विकसित होने लगती है। कई बच्चे ऑनलाइन अश्लील सामग्री के संपर्क में आ जाते हैं। अश्लील मैसेज का आदान प्रदान करना, अश्लील फोटो शेयर करना और ऑनलाइन अश्लील चैट करना ऐसी आदतें हैं जो गैजेट्स की वजह से बच्चों में जड़ जमाने लगती हैं। आधुनिक गैजेटों से चिपके बच्चों को उनके माता पिता बार बार बाहर जाकर खेलने के लिए उत्साहित करते हैं, लेकिन उन पर जरा भी असर नहीं पड़ता। बच्चे ऑनलाइन गेम्स के इतने आदि हो जाते हैं कि वे बार बार मना करने पर भी उस जाल से नहीं निकल पाते। विशेषज्ञों के अनुसार गैजेटों के अतिशय उपयोग से अभिभावकों और बच्चों के बीच तनावपूर्ण संबंध, सामाजिक जान पहचान की कमी और साधारण कार्यों में अकुशलता जैसे परिणाम सामने आते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए अभिभावकों को कम उम्र के बच्चों के साथ खुद रहना चाहिए ताकि वो अच्छा महसूस करें और इसी से उनके दिमाग का अच्छा विकास होता है। अभिभावकों को यह समझने की जरूरत है कि उन्हें कितना समय इन गैजेटों के साथ बिताना चाहिए।
माता पिता और अध्यापकों को जागरूकता दिखाते हुए बच्चों के साथ

0: ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आउटडोर खेलकूद में ज्यादा समय दें, एकांत में न रहें और परिवार के सदस्यों के साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ खेलें कूदें।
1: तो सखियों, अभी आप सुन रही थी शैली अग्रवाल से वार्ता आधुनिक गैजेट्स का दुष्प्रभाव, और यहाँ रुकते हैं इस छोटे से अंतराल के लिए।

वेलकम बैक सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर संसार और आपके साथ मैं हूं प्रीति। सखियों, आपको याद होगा कि कैसे भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। तब से 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस ऐतिहासिक दिन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था और इसी के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। इस दिन को हंसा 3 एयरक्राफ्ट और त्रिशूल मिसाइल के परीक्षण के लिए भी याद किया जाता है। अब सखियों, बात मुद्दे की यह है कि यहां से एक नई वैज्ञानिक सोच का प्रसार होने लगा। तकनीक का विकास, शिक्षा, उद्योग और दैनिक जीवन को कुछ और सुगम बनाने की दिशा में होने लगा। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस राष्ट्र के विकास पथ पर आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने वाला कदम बन चुका है। चाहे वो आत्मनिर्भरता अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो या हाल ही में भारत में हुआ AI इंपैक्ट समिट, डिजिटल नवाचार हो, हरित क्रांति, लघु उद्योग या फिर स्टार्टअप्स, अब मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की नींव पड़ चुकी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस उस सोच को प्रोत्साहित करता है जो समावेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन साधारण को भी स्टार्टअप के माध्यम से ग्रास रूट लेवल पर सशक्त नई पहल का प्रोत्साहन और सहयोग देता है। हमें न सिर्फ अपने कम लागत वाले मितव्ययी और उपयोगी नवाचारों पर गर्व है, बल्कि हमारी तकनीक और खोज विश्व के लिए भी उपयोगी है। तो सखियों, राष्ट्र की सुरक्षा और स्वर्णिम भविष्य की ओर ये भारत की उड़ान है। तो चलिए, भारत की उड़ान और विविधता के क्या कहने, अब बात विविधता तक आ ही गई है तो भाई गर्मी का मौसम है, भारत जी हाँ विविधता से तो भरा ही हुआ है और भारत में जायके की भी कहाँ कमी है। तो चलिए आज रेसिपी टाइम में बनाते हैं सिंपल और अद्भुत स्वाद वाली दक्षिण भारतीय रेसिपी वेन पोंगल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। तो मूंग की दाल आधी कटोरी लीजिए और इसको ना हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए खुशबू आने तक। इसके बाद इसे एक कटोरी चावल के साथ मिलाकर धो लीजिए। अब प्रेशर कुकर में इसे डालकर लगभग 3.5 कटोरी पानी डालिए, साथ में डालिए 1 बड़ा चम्मच घी, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डालकर खिचड़ी की तरह से इसे पका लेना है। और जब ये पक जाए तो भाई चेक कर लीजिए कि खिचड़ी के बराबर कंसिस्टेंसी है या नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला लीजिए और इसके बाद तैयार करना है इसका खास तड़का। तो इसके लिए 1 कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून घी गरम करें। भाई घी ना जितना डलेगा उतना ही ये खुशबूदार बनने वाला है और इसमें काजू भी खूब अच्छा डलता है। तो 3 से 4 टेबलस्पून घी गरम करें और इसमें डालें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, कुछ कटी हरी मिर्च डालें, थोड़ा सा चॉप्ड अदरक डालें, 1 टेबलस्पून काजू डालें, वो भी एक पीस को 2 फांक में सेपरेट करके। करी पत्ता डालिए, हींग डालिए और बहुत अच्छे से भून लीजिए। अब इस तड़के को लगाएं वेन पोंगल में। जी हाँ, तैयार है अपने खास स्वाद के साथ वेन पोंगल, जो कि खाने में बहुत लाजवाब लगता है। और भाई इस गर्मी के मौसम में कुछ हल्का फुल्का मिल जाए ना खाने को तो बस मज़ा ही आ जाता है। और बात गर्मियों के मौसम की है तो हमारी फिक्र तो यही रहती है ना कि हम कैसे अपने आप को ठंडा और आरामदायक स्थिति में बनाए रखें। भाई ऐसे में स्टाइल और आराम की बात करें तो धूप को परिवर्तित करने वाले हल्के रंग के परिधान सबसे अच्छे विकल्प बन जाते हैं। साथ ही त्वचा

को आराम देने वाले फैब्रिक जैसे सूती, लिनन, खादी और हैंडलूम त्वचा को ठंडा रखते हैं, पसीना भी ये सोखते हैं। आउटफिट्स के लिए लाइट कलर्स की रेंज में पेस्टल कलर्स और न्यूट्रल टोन्स देखने में भी अच्छे लगते हैं। स्टाइल करने में भी ये काफी वैरायटी लिए होते हैं, जैसे पेस्टल पिंक, पाउडर ब्लू, मिंट ग्रीन, ऑलिव शेड्स। ये सारे पेस्टल कलर्स सफेद रंग के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सफेद रंग के परिधान भी गर्मी में काफी पहने जाते हैं, लेकिन सखियों, क्या आप जानती हैं कि सफेद के भी कई सारे ना टोन्स होते हैं, जैसे ऑफ वाइट, आइवरी, स्नो वाइट, क्रीम, और फैब्रिक के हिसाब से भी इसके शेड्स अलग सटल लुक देते हैं। गर्मियों के लिए सॉफ्ट येलो रंग भी एक अच्छा विकल्प है। इस गर्मी में स्टाइल और आराम के लिए हल्के रंगों को प्राथमिकता दें। तो भाई, आराम बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में काम भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, यहां पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ सखियों, एक अकेला अगर कोई चल रहा है और उसे साथ मिल जाए तो फिर क्या बात है। सखियों, जीवन की कोई भी चीज़ ना बेमतलब नहीं होती, उसे अर्थ देना होता है, उसका मोल काबिलियत पहचाननी होती है। सफल लोग हो सकता है कि कहानी बन जाते हैं, पर ये चमक जो दुनिया को दिखती है वो असल में कड़ी मेहनत, बार बार प्रयास, असफलताओं से आमना सामना, बहुत सारा बर्नआउट, जुनून की हद तक किए गए प्रयास होते हैं। ये वही सपने होते हैं जो हमें अभी बेबुनियाद से सफलता असफलता के तराजू पर झूलते दिख रहे होते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे अनगिनत सवाल घेरे रहते हैं, पर सच्ची लगन, अपने सपने पर विश्वास और रणनीति हमारा वो पहला कदम बनता है जो हमें मंजिल की ओर ले जाता है। फिर कदमों को कौन गिनता है, प्रयासों को कौन देखता है, किसने कहा कोई भी काम आसान होता है, उसे तो बस किया जाता है। कठिन या आसान के पैमाने पर जुनून और लक्ष्य को मापा नहीं जाता, उसको सच बनाया जाता है। अभी शायद जल्दी उठने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन फिर सुबह सपने जगाते हैं, खुद ब खुद हमें राहें खोज लेती हैं। और सखियों, बात सिविक सेंस की भी हो रही थी, तो हो सकता है कि हम वैज्ञानिक ना हो, इंजीनियर भी ना हो, कोई पॉलिसी मेकर भी ना हो, लेकिन हम हैं जनसाधारण जिनकी पहुंच देश के हर गली मोहल्ले तक है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सिविक सेंस विकसित करने के लिए। तो जब तक प्रयास धरातल पर होंगे नहीं, तो कमियां कहाँ से निकाली जाएंगी, क्या खाली स्लेट पर? नहीं ना, स्वच्छता को सपोर्ट सब करते हैं, पर हाथ मैले कोई नहीं करना चाहता है। तो चलिए शुरुआत स्वयं से करें। प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

बहनें भी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कलाकार पंकज उदास की गाई हुई कुछ चयनित गजलें। पहली गजल के बोल हैं, तुमसे मिलकर ही यकीन।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गाई हुई कुछ चयनित गजलें। प्रस्तुत है ये अगली गजल, जिसके बोल हैं, रास्ते में वो मिला अच्छा लगा।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार पंकज उदास के गाए हुए कुछ चयनित गजलें और कार्यक्रम था सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर के समाचार। इन बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा

0: ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

0: साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
1: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र का प्रसारण मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित मोहित कुमार द्वारा धुन पहाड़ी में गिटार वादन।

श्रोता भी सुन रहे थे पंडित मोहित कुमार द्वारा धुन पहाड़ी में गिटार वादन। इस समय श्रोता सुन रहे हैं उपसा शास्त्रीय संगीत का आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर आइए सुनते हैं पंडित डी के तातार द्वारा मिश्र पीलू में वायलिन वादन।

श्रोता भी सुन रहे थे पंडित डी के दातार द्वारा मिश्र पीलू में वायलिन वादन और कार्यक्रम था उपशास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नौशाद के संगीत निर्देशन में फिल्म कोहिनूर से ये नगमा, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, और इस गीत को लिखा है शकील बदायूं ने।

वो पुराने गीत यूं ही नहीं अच्छे लगते, उनमें गुजरे हुए लम्हों के मौसम बसते हैं। जी हाँ श्रोताओं, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म कोहरा से ये अगला भूला बिसरा गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया है हेमंत कुमार ने। इस गाने में संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इसे शब्दों में पिरोया है कैफी आजमी ने।

भूले बिसरे गीतों में एक जादू सा होता है, हर सुर दिल के किसी कोने को छूता है। जब भी पुराने गीत हवा में गुनगुनाते हैं, बीते हुए दिन आंखों में लौटाते हैं। जी हां श्रोताओं, और इन पंक्तियों के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए आपको अगला भूला बिसरा गीत सुनवाते हैं फिल्म लाला रुख से, जिसमें अपनी आवाज दी है तलत महमूद ने, संगीत निर्देशन है खयाम का और शब्द रचना कैफी आजमी की।

भूले बिसरे गीतों की यही कहानी है, हर धुन में छिपी किसी की जवानी है। पुराने गीतों की मिठास कम नहीं होती, बस नई दुनिया को उनकी कदर नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जिसे हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म किनारे किनारे से लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत निर्देशन है जयदेव का और शब्द रचना न्याया शर्मा की।

कुछ भूले बिसरे गीत आज भी दिल में उतर जाते हैं, पुरानी यादों के बंद दरवाजे फिर से खुल जाते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारा आज का ये भूला बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीस

0: छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग,
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
0: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
0: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
0: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
0: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
0: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, Have you seen a bicycle?
3: Yes, sir. We have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
6: My cycle is pink.
4: And mine is blue.
8: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Train, train, train!
2: do it again, please. I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin.

0: माई बाइसिकल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
2: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
3: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
4: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
3: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
4: वो तो ठीक है साहब,
3: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
4: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
3: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
4: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
3: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
2: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना

0: डरकर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा। और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की आश्वस्त आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। उन्होंने कहा कि संकटकाल के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आयात 76.78% रहा।

किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन विभिन्न उर्वरक शामिल किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉ सिंह ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रूपये का हो गया है। वहीं रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014 में देश में लगभग 350 स्टार्टअप थे, लेकिन आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। पुदुचेरी में बुधवार को एनडीए नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली 8वें स्थान पर है। दोनों ही टीम के लिए ये मैच प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले जानकारी लीजिए हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम युवावाणी में शाम 5:30 पर चर्चा होगी डिजिटल लत पर। नई पहल में आप जानेंगे स्वामित्व योजना के बारे में। इतिहास के पन्नों से आपको बताएंगे होलोसीन युग के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे कुणाल कालरा की वार्ता, विषय होगा मानव जीवन की बेहतरी के लिए तकनीकी। साथ ही आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। शाम 6:00 कार्यक्रम ग्राम्यालोक में चर्चा के विषय होंगे खेती में नवाचार और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भेंटवार्ता क्रम में आप सुनेंगे ड्रोन तकनीक से फसल स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी विषय पर। पूर्व उप निदेशक कृषि विभाग डॉ. राधेश्याम सिंह से अनेंद्र सिंह की बातचीत। इसके अलावा आप सुनेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और कुछ लोकगीत। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा होगी श्रमिक और बचत के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे घरेलू नुस्खे, सेहतनामा, ज्ञान सागर, आज की पाती और फिल्मी गीत। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे सादत हसन मंटो जयंती पर केंद्रित वार्ता, समाज का निर्मम आईना है मंटो की कहानियां। वार्ताकार होंगे डॉ. शिवचंद प्रसाद। 7:31 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

ए गजल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे, 8:30 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत। 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। 10 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे शुभ्रा तलेगांवकर का ख्याल गायन रात 10:30 पर। और अब सुनिए कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर चिंतन कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के विचार। 6:35 पर प्रसारित होगा श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर एसके सिंह की वार्ता जायद में कद्दू कुल की सब्जियां विषय पर 6:45 पर। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे चर्म रोग का होम्योपैथी उपचार विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगी डॉक्टर सोनिया प्रीत कौर। 7:31 पर प्रसारित होगा आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि में सदाबहार फिल्मी नगमे। गीत मंजूषा कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा पुरानी फिल्मों से तरानों का 9:25 पर। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में कल कलाकार होंगी डॉक्टर तबस्सुम सलीम। 10 बजे आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुरसरिता में सदाबहार फिल्मी गीतों का। 11 बजे कार्यक्रम आज के कलाकार केंद्रित होगा अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। 11:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये केंद्रित होगा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस पर। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिन में 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम नए तराने। 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर संसार। सुगम संगीत में आप सुनेंगे तलत अजीज की गायी कुछ गजलें दिन में 1:45 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संध्या।

अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र दहलवी की रचना को सुरेश वाडकर की आवाज में नागमणि फिल्म से। संगीत दिया था अनु मलिक ने। इस भक्ति गीत के बाद आइए सुनते हैं संत ज्ञानेश्वर फिल्म का भजन सुरेश वाडकर की आवाज में। रचनाकार है पंडित किरण मिश्रा, संगीतकार हैं नंदू।

इस भजन के बाद आइए सुनते हैं साथी फिल्म का भक्ति गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। शब्द रचना है समीर की और संगीत है नदीम श्रवण का।

अभी आप सुन रहे थे युग पुरुष फिल्म का भजन रविंद्र साठे की आवाज में। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत था राजेश रोशन का। इसके साथ ही कार्यक्रम सुरसंध्या यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं प्रकीर्णा, आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट, स्वागत करती हूं आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहां हम करते हैं ढेर सारी काम की बात, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के साथ। तो बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, और अब तापमान बढ़ने की आशंका है तो गर्मी खाने के लिए भी तैयार हो जाइए। वैसे एक बात तो है, आजकल मौसम का पता लगाना बेहद आसान हो गया है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। कहीं घूमने जाना हो तो पूरे हफ्ते का वेदर फोरकास्ट देखकर अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और आज तो आकाशवाणी भी सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं है, आप अपने फोन पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके हमें कहीं से भी सुन सकते हैं, क्योंकि आज हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। याद है पहले ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, और आज कहीं पास में जाना हो तो झटपट ऑटो या कैब बुक हो जाती है। यानी आज की दुनिया में सिर्फ 2-3 क्लिक्स में बहुत कुछ पॉसिबल है, जो कि 10-15 साल पहले तक हमने सोचा भी नहीं था। ये सब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ही जादू है। इस बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपके घर या जमीन का कोई पक्का सरकारी रिकॉर्ड ना हो तो क्या होगा? कभी विवाद या धोखाधड़ी, तो कभी बैंक से लोन लेने में परेशानी। ग्रामीण भारत में वर्षों से यही समस्या रही है, लेकिन अब इस परेशानी का समाधान लेकर आई है भारत सरकार की एक नई पहल। शायद आप इस बारे में जानते हो, और नहीं तो पता लगाइए। इसका जवाब हम जानेंगे कार्यक्रम के अंत में। तो लौटते हैं अपने टॉपिक पर, हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आज मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई हो, काम हो, शॉपिंग हो या एंटरटेनमेंट, हर चीज स्क्रीन पर आ गई है। लेकिन अब यही स्क्रीन हमारी आदत से बढ़कर हमारी

0: मजबूरी बन जाए तब शुरू होती है समस्या। क्या आपने कभी गौर किया है, आज हम साथ बैठकर भी एक दूसरे से कम और मोबाइल से ज्यादा बात करते हैं। बच्चे बाहर खेलना कम और स्क्रीन पर गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, और शायद आप रात को बस 10 मिनट मोबाइल चलाने के चक्कर में घंटों जागते रहते हैं। तो दोस्तों, इसे हम डिजिटल लत की शुरुआत कह सकते हैं। डिजिटल लत का मतलब है मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स या इंटरनेट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। तो सवाल है, आखिर डिजिटल लत इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हर चीज का डिजिटल हो जाना। पढ़ाई ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन, यहाँ तक कि दोस्ती और बातचीत भी ऑनलाइन हो जाती है। मोबाइल अब सिर्फ जरूरत नहीं रह गया है बल्कि हमारी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। दूसरी बड़ी वजह है सोशल मीडिया का आकर्षण। रील्स, शॉर्ट्स और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को बार बार फोन चेक करने की आदत डाल देते हैं। हर नया लाइक, कमेंट और मैसेज दिमाग को इंस्टेंट खुशी देता है और धीरे धीरे यही आदत लत बन जाती है। तीसरी वजह है अकेलापन और तनाव। आज की तेज दौड़ती जिंदगी में लोग स्ट्रेस और अकेलेपन से बचने के लिए मोबाइल का सहारा लेने लगे हैं। कुछ देर का एंटरटेनमेंट धीरे धीरे घंटों की आदत बन जाता है, और सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है नई जनरेशन पर, क्योंकि बच्चों ने बचपन से ही मोबाइल को अपने आसपास देखा है। आउटडोर गेम्स, किताबें और फैमिली कॉन्वर्जेशंस की जगह अब स्क्रीन्स ने ले ली है। कोरोना काल के बाद ये समस्या और बढ़ गई। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम ने स्क्रीन टाइम को कई गुना बढ़ा दिया। कोरोना के बाद लोगों की आदतें तो बदल गई पर स्क्रीन से दूरी नहीं बन पाई। लेकिन दोस्तों, तकनीक दुश्मन नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उसका इस्तेमाल कंट्रोल करने के बजाय उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम इनोवेशंस ला सकते हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी सच कर सकते हैं। दोस्तों, आज 11 मई को हम मना रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये दिन क्यों मनाया जाता है और कैसे तकनीकी के इस्तेमाल से मानव जीवन बेहतर बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं वार्ताकार कुणाल कालरा से।
1: अगर मोबाइल ना होता, इंटरनेट ना होता, या फिर अस्पतालों में आधुनिक मशीनें ना होती, तो क्या हमारी जिंदगी इतनी आसान होती? सुबह उठने के लिए अलार्म से लेके रात को किसी अपने से वीडियो कॉल पर बात करने तक, आज तकनीक यानी टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। हर साल 11 मई को हमारे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 11 मई 1998 में भारत के राजस्थान के पोखरण में एक सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले न्यूक्लियर हथियार केवल यूएसए, चाइना, रशिया, यूके और फ्रांस के पास ही थे। इस उपलब्धि ने दुनिया को यह दिखला दिया कि भारत केवल संस्कृति और इतिहास में ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी किसी से पीछे नहीं। इस पूरे परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिन एक प्रमाण बना कि भारत कोई कमजोर देश नहीं बल्कि शक्तिशाली देशों में से एक है। इसके बाद यह दिन देश में हर साल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाने लगा। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कभी भी मुमकिन नहीं कि हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र ना करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत की टेक्नोलॉजी, खासकर अंतरिक्ष और डिफेंस में अतुल्य योगदान है। उन्होंने हमारी कई सारी मिसाइलें जैसे अग्नि, पृथ्वी और हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण भी किया है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कभी भी मुमकिन नहीं कि हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र ना करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत की टेक्नोलॉजी, खासकर अंतरिक्ष और डिफेंस में अतुल्य योगदान है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और 1998 का पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आज से 20-25 साल पहले का भारत देखा जाए और आज का भारत देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। आज का भारत तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि तकनीक का निर्माता है। DRDO, इसरो

0: तथा आईआईटी के साइंटिस्ट और छात्र दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। इस कारण से भारत रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में आविष्कार कर रहा है। पहले हम मिसाइल, फाइटर जेट, रेडार सब इम्पोर्ट करते थे, लेकिन आज हम सब इन्हीं उपकरणों को एक्सपोर्ट करते हैं। भारत की कई मिसाइलें पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, आईएनएस विक्रांत, प्रचंड हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम, सबका निर्माण स्वदेशी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बहुत कम खर्चे में ऐसे मिशन पूरे किए जिनकी दुनिया तारीफ करती है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने भारत को दुनिया के कई बड़े देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले डिजिटल नेशन में गिना जाता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम ने लेन देन का तरीका बदल दिया है और हमारी इसी यूपीआई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कई देश रुचि दिखा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया लॉकडाउन की जंजीरों में बंधी थी, तब भारत ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण भी किया। आज भारत के गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है, बच्चे मोबाइल का प्रयोग करके पढ़ाई कर रहे हैं, किसान मोबाइल का प्रयोग करके मौसम व फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और डॉक्टर टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपने से दूर बैठे मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। AI का प्रयोग करके दवाइयाँ और उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी हमने कई ऊंचाइयों को छुआ है। अगर तुलना करें तो अमेरिका, जापान और चाइना तकनीक के क्षेत्र में हमसे काफ़ी आगे हैं, लेकिन हमारे देश ने बहुत कम साधनों में तेजी से प्रगति करी है। आज घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और टिकट बुकिंग जैसे काम मिनटों में हो रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन हर चमकती चीज़ के पीछे कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। तकनीक जहाँ सुविधा देती है, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। आज की नई पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट पर बहुत अधिक निर्भर होती जा रही है। बढ़ता स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग मानसिक तनाव, अकेलापन और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं बढ़ा रहा है। आज साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी खबरें फैलना आम हो चुका है। तकनीक का इस्तेमाल सीखने और आगे बढ़ने और दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए, ना केवल समय बर्बाद करने के लिए। पेरेंट्स को बच्चों को डिजिटल डिसिप्लिन सिखाना होगा और हमें भी समय समय पर मोबाइल से ब्रेक लेकर असली दुनिया से जुड़ना होगा। दोस्तों, तकनीक एक साधन है, मंजिल नहीं। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो यह मानव जीवन को सुरक्षित, आसान और बेहतर बना सकता है। ऐसे में जरूरी है तकनीक का संतुलन उपयोग। तकनीक इंसान के लिए है, इंसान तकनीक के लिए नहीं। स्कूल के बच्चे केवल तकनीक का उपयोग नहीं, स्कूल में बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग नहीं बल्कि उसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल भी सिखाना होगा। हमें डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत जानकारी से बच सके। इसके साथ ही नई पीढ़ी को खेल, किताबें, प्रकृति और परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी प्रेरित करना ज़रूरी है। तकनीक तभी लाभदायक है जब वह जीवन को आसान बनाए। ज़रूरत इस बात की है कि विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी बचाकर रखना है, क्योंकि असली प्रगति वही है जहां तकनीक और इंसानियत दोनों साथ हैं।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता मानव जीवन की बेहतरी के लिए तकनीकी, वार्ताकार कुणाल कालरा से, जहां हमने जाना कि टेक्नोलॉजी और रियल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। तो डिजिटल लत से बचें और फोन को रखें साइड में। वक्त है आपके एंटरटेनमेंट का। आइए सुनते हैं फिल्म सुपर 30 का ये गाना।

जोग्राफिया। दोस्तों ये गाना आजकल बहुत ट्रेंड में है। श्रेया घोषाल की प्यारी आवाज और उदित नारायण के नॉस्टैल्जिक टच की वजह से इस गाने को काफी पसंद किया गया। वैसे दोस्तों ज्योग्राफी की बात करें तो आज जो हमारी पृथ्वी की ज्योग्राफी देख रहे हैं ये शुरुआत में काफी अलग थी। सोचने वाली बात है, आज हम टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं लेकिन उस समय जब ना शहर थे, ना सड़कें, ना मोबाइल, ना मशीनें, तब इंसान कैसे जीता होगा, धरती कैसी दिखती होगी, जानना चाहेंगे? तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और समय की उस लंबी सुरंग में चलते हैं जहां से शुरू हुआ आधुनिक मानव सभ्यता का सफर। हम बात कर रहे हैं होलोसीन युग की। लगभग 11,700 साल पहले पृथ्वी ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। उससे पहले धरती

पर था आइस एज यानी हिमयुग। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादरें थी, तापमान बेहद कम था और जीवन संघर्ष से भरा हुआ। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होने लगी, बर्फ पिघली, नदियां बनी, जंगल उगने लगे और शुरू हुआ होलोसीन युग। होलोसीन शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है पूरी तरह नया, यानी धरती के लिए एक नई शुरुआत। उस दौर का मानव आज की तरह आधुनिक नहीं था, वह छोटे छोटे समूहों में रहता था, शिकार करता था, फल फूल इकट्ठा करता था और धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा। यही वो समय था जब इंसान ने पहली बार खेती शुरू की, जानवर पालने शुरू किए, स्थायी घर बनाए और फिर धीरे धीरे गांव और सभ्यताएं बसने लगी। यानी अगर कहा जाए कि आज की पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव होलोसीन युग में रखी गई तो गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत की। होलोसीन युग बाकी युगों से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दौरान पृथ्वी का क्लाइमेट काफी स्टेबल रहा, ना ज्यादा ठंड ना बहुत बड़े प्राकृतिक बदलाव, और इसी स्थिरता ने इंसानों को आगे बढ़ने का मौका दिया। इस युग में पैदा हुई महान सभ्यताएं जैसे मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन संस्कृति, यानी लेखन, विज्ञान, व्यापार, संगीत, कला, सबकी शुरुआत इसी युग में हुई। लेकिन आज वैज्ञानिक एक नई चिंता भी जता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब इंसान ने धरती पर इतना प्रभाव डाल दिया है कि हम शायद होलोसीन से आगे बढ़कर एक नए युग एंथ्रोपोसीन में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी पृथ्वी को तेजी से बदल रही है। तो क्या हम उस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं जिसने हजारों सालों तक मानव सभ्यता को सुरक्षित रखा? ये सवाल आज पूरी दुनिया के सामने है। दोस्तों, होलोसीन युग हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता, यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति और मानव का संतुलन कितना जरूरी है। क्योंकि जब धरती संतुलित होती है तभी सभ्यताएं जन्म लेती हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। आपको याद है कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन विवाद को खत्म करके लोगों को उनकी जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो इसका जवाब है स्वामित्व योजना। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व यानी ओनरशिप। ये योजना ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का प्रॉपर्टी कार्ड देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2020 में की थी। इसका उद्देश्य है गांवों की आबादी वाली जमीन का ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से सही डिजिटल सर्वे करना और लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड देना। अब सवाल है कि ये सर्वे कैसे होता है। तो इसके लिए इस्तेमाल होती है आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन गांवों के ऊपर उड़कर जमीन का सटीक नक्शा तैयार करते हैं जिससे प्रॉपर्टी बाउंड्रीज साफ हो जाती हैं। दोस्तों इस योजना के फायदे ये हैं कि प्रॉपर्टी ओनरशिप का आपको ऑफिशियल प्रूफ मिलता है। प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर लोग बैंक से लोन लेने में सक्षम हो सकते हैं। जमीन संबंधी विवाद खत्म होने की संभावना बढ़ती है। गांव में बेहतर प्लानिंग और डेवलपमेंट करने में सरकार को मदद मिलती है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। अच्छी बात यह है कि कई जगहों पर सर्वे प्रक्रिया सरकार द्वारा खुद करवाई जाती है, लेकिन अगर किसी को जानकारी चाहिए या प्रक्रिया में शामिल होना है तो वो अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। पंचायत अधिकारी या लेखपाल से जानकारी ले सकते हैं और राज्य सरकार के पंचायत विभाग की वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे पूरा होने के बाद एलिजिबल लोगों को उनका प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। दोस्तों स्वामित्व योजना सिर्फ जमीन का कागज नहीं बल्कि ग्रामीण भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की एक कोशिश है और ये टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव हो पाया है। तो दोस्तों टेक का फायदा सिर्फ शहरों या डिफेंस या स्पेस में नहीं है बल्कि ये लोगों को उनका अधिकार दिलाने में भी सक्षम है। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर विज्ञान अनुसंधान और नवाचार से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सभी वैज्ञानिकों इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना होगा जहां पर वो हम देशवासियों से अपील कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल लिविंग की, जहां पर वो ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं जो कि आज के समय की जरूरत भी है। आपने एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ तो सुना ही होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर हम एनर्जी बचाते हैं तो वो

एनर्जी जनरेट करने के बराबर ही होता है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं और ईंधन को बचाएं। दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मेरी यानी प्रकीर्णा के साथ। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

कार्यक्रम ग्राम्य लोक सुनने वाले सभी भैया बहनों को मुक्ता सिकरवार की राम राम। साथियों, मौसम कोई भी हो, गर्मी, सर्दी या बरसात, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन ही हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और हम अपने भोजन की पूर्ति मुख्य रूप से अनाज, दालें, तिलहन की फसलों, सब्जियों, फलों, दूध आदि से करते हैं। और हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व हैं, हम जानते हैं कि वो हैं प्रोटीन, वसा, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन और जल। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे पशुधन को भी उचित और संतुलित पोषण देना आवश्यक है, जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता और कार्य क्षमता बनी रहे। दोस्तों, आज का युग तकनीक का युग है, तो खेती किसानी भी अब पहले जैसी नहीं रही। खेती में भी बहुत से नवाचार हो रहे हैं, यानी नई नई वैज्ञानिक तकनीकें आ रही हैं, जैसे कि AI, ड्रोन और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाकर खेती के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। इससे लागत कम हो रही है और किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है। आजकल जो खेती में नवाचार हो रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख है AI का, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग। AI का फसलों में बीमारियों की पहचान करने, मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए मिट्टी के विश्लेषण में उपयोग किया जा रहा है। साथ ही कृषि ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव और सेंसर आधारित IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से खेती की रिमोट मॉनिटरिंग भी आसान हो गई है। सटीक कृषि तकनीक के द्वारा मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों के अनुसार उर्वरक और पानी का सटीक उपयोग किया जा रहा है, जिससे संसाधनों की बचत होती है। एक और जो कृषि में नवाचार है, वो है हाइड्रोपोनिक्स, यानी बिना मिट्टी के पानी में खेती और ऊर्ध्वाधर खेती, जिसे कि हम वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं। वर्टिकल फार्मिंग द्वारा कम जगह में अधिक उत्पादन किया जाता है। टमाटर, प्याज और लहसुन जैसी फसलों के लिए प्रोसेसिंग मशीनें अपनाई जा रही हैं, जिससे कि फसल खराब ना हो और फसल को बेहतर मूल्य मिले। साथ ही सौर ऊर्जा पंप यानी कि सोलर पंप का उपयोग किया जा रहा है। सिंचाई के लिए पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग लागत को कम करता है। किसान भाइयों, खेती में नवाचार के बहुत से लाभ हैं। उन्नत बीजों और तकनीक के उपयोग से कम समय में अधिक उत्पादन संभव है, क्योंकि AI और सेंसर खाद और पानी की बर्बादी को रोकती है, तो लागत में कमी आती है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। फसलों की प्रोसेसिंग से फसलों का बेहतर मूल्य मिलने से आय में वृद्धि होती है।

है। साथ ही ये सभी तकनीक पर्यावरण के अनुकूल हैं, जिससे कि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नवाचारों के लिए सरकार डिजिटल इंडिया के तहत स्टार्टअप्स और कृषि उद्योगों को बढ़ावा भी दे रही है। साथियों, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आइए चलते हैं लोकगीतों की ओर और सुनते हैं ये मधुर लोकगीत रेखा रानी के स्वर में।

साथियों, खेती में नवाचार पर आज हमने चर्चा की और आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी है, तो ड्रोन तकनीक के बारे में बात करने के लिए आज से बेहतर समय तो हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि वर्तमान तकनीक के युग में ड्रोन तकनीक का उपयोग फसल की निगरानी के लिए किया जा रहा है। खेती के सभी आयामों जैसे बुवाई, पोषक तत्वों की आवश्यकता, सिंचाई आदि की जो भी देखरेख

0: है वो ड्रोन द्वारा की जा रही है और उचित संसाधनों का प्रयोग भी किया जा रहा है जिससे कि फसल का स्वास्थ्य बेहतर होता है, समय की भी बचत होती है और लागत भी कम लगती है और आय में तो बढ़ोतरी होती ही है। तो साथियों, इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पूर्व निदेशक कृषि डॉक्टर राधेश्याम सिंह को। उनसे बातचीत कर रहे हैं अनिंद्र सिंह और विषय है ड्रोन तकनीक से फसल स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी।
1: किसान साथियों नमस्कार। जमाना आजकल तकनीकी का है दोस्तों, और अब खेती किसानी में भी तकनीकी आ रही है। ड्रोन का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत चर्चा है आजकल ड्रोन्स की। लेकिन अच्छी बात यह है कि खेती में भी अब ड्रोन यूज़ होने लगे हैं। ड्रोन तकनीकी किस तरह से हमारी फसल स्वास्थ्य को बेहतर कर सकती है, आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं बहुत ही अनुभवी वैज्ञानिक। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी। करीब करीब 4 दशक का अनुभव है आपके पास, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार
2: सर। नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। खेती में भी ड्रोन की भूमिका जो है लगातार बढ़ रही है, ये हम सब देख रहे हैं। किस तरह से ड्रोन खेती में किसानों को मदद कर सकता है, मतलब बहुत सारे आयाम हैं। मैं सारे आयाम चाहूँगा कि आप हमारे किसान साथियों के साथ साझा करें। सबसे पहले यही कि ड्रोन्स जो है वो क्या क्या कर सकते हैं जो हम आमतौर पर किसान साथी नहीं कर पाते।
2: धन्यवाद सर। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, वर्तमान में जो है ड्रोन का प्रयोग उत्तरोत्तर खेती में बढ़ता जा रहा है। ड्रोन तकनीकी जो है वो एक क्रांतिकारी तकनीकी के रूप में खेती में काम में आने वाली है। ड्रोन के प्रयोग करने से हमारे किसान भाइयों की समय, ऊर्जा एवं धन की बचत होती है। साथ ही ये चूंकि ज्यादा इफेक्टिव है इसलिए इसके प्रयोग करने से उत्पादन भी बढ़ता है। ड्रोन के मुख्यतः दो कार्य हैं, यानी दो तरह से ये उपयोगी है। पहला कार्य है कि ये फसल स्वास्थ्य निगरानी, यानी इसको सर्वेलेंस भी कहते हैं। ड्रोन में मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा होते हैं जिन कैमरों के द्वारा हम फसल में लगने वाले विभिन्न रोग, कीट, पोषक तत्वों की कमी एवं सिंचाई की कमी, इसको बहुत बारीकी से देख पाते हैं।
1: मतलब जो खेती के जितने भी आयाम हैं
2: सर,
1: चाहे वो हमारी बुआई का जो एक हमारी डिस्टेंसिंग होती है
2: जी,
1: खेत की तैयारी होती है उस वक्त भी और उसके बाद जब हमारी बुआई करनी है, कितनी कितनी दूरी पे आए हैं, पेड़ों की कंडीशन कैसी है, उनका जमाव कैसा है
2: जी,
1: उसके बाद उनमें कहाँ क्या पोषक तत्व अगर कम है तो वो जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो पता लग जाते हैं किसान साथियों को
2: जी।
1: लेकिन पेड़ जब उगता है और जब फसल शुरुआत होती है तो इतनी डेंस होती है कि नंगी आंखों से शायद पता नहीं लगता
2: जी
1: किसान
2: जी
1: को।
2: जी बिल्कुल,
1: तो
2: बिल्कुल
1: वो जो ड्रोन है वो भीतर तक सब चीजें देख के आपको सारी जानकारी आपको मुहैया।
2: वही सर मैं बताने वाला हूँ कि जनरली हम अपने खेत में जब भी जाते हैं तो फसल के ऊपर की पत्तियों को देखते हैं या बाहरी आंखों से जो देखते हैं तो कुछ जो सूक्ष्म रोगों के लक्षण हैं, पोषक तत्वों की कमी है या कीटों का आक्रमण है या सिंचाई की आवश्यकता है, तो ये सही एस्टिमेशन नहीं हो पाता है।
1: बिल्कुल ठीक।
2: इसमें मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरे से जो है एक नक्शा तैयार किया जाता है जिससे बारीकी से वो सारी चीजें जो है हम बात कर लेते हैं।
1: वैज्ञानिक तरीके से हमारे पास डेटा होता है, उसका एनालिसिस करके हम बहुत सूक्ष्म माइक्रो तरीके से उसको देख पाते हैं।
2: जी।
1: दूसरा आयाम क्या बता रहे हैं?
2: दूसरा आयाम सर जो है वो है छिड़काव, यानी स्प्रेइंग।
1: अच्छा।
2: ड्रोन का हमारी फसलों पर स्प्रेइंग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें स्प्रेइंग के लिए चाहे हम विभिन्न तरह के पेस्टिसाइड जिसमें कीटनाशी, फफूंदीनाशी, इसके अलावा PGR, यही नहीं सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्प्रे, विशेषकर NPK के और जो ट्रेस एलिमेंट है उनके स्प्रे भी हम बखूबी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ड्रोन के स्प्रे करने से हमें क्या क्या फायदे हैं? एक तो इसमें जैसे समय बहुत कम लगता है। एक एकड़ के छिड़काव के लिए मात्र 15 से 20 मिनट में हमारा स्प्रे,
1: एक एकड़ 15 से 20 मिनट
2: जी जी 15-20 मिनट में स्प्रे हो जाता है।
1: क्या बात है।
2: दूसरा सर ये है कि इसमें चूंकि ये सीधे पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तो ज्यादा इफेक्टिव है।
1: माने हम जो छिड़काव करते हैं, जो हमारे परंपरागत तरीके होते हैं
2: जी,
1: उसमें तो कहीं मतलब अंदर तक नहीं पहुंचता, ऊपर ऊपर तो छिड़काव हो जाता है
2: जी।
1: लेकिन ये जो स्प्रे कर रहा है ड्रोन के द्वारा
2: जी,
1: वो जो है प्रॉपरली जहां जब जितनी जरूरत है वहां तक वो पहुंच के कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, सीधे पत्तियों पर जाता है तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। ज्यादा इफेक्टिव होने से रोग कंट्रोल होते हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति जल्दी हो जाती है और कीट भी नियंत्रित हो जाते हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। सर और मेजर कौन कौन

0: फायदे हैं, मैं सूक्ष्म में ही बताना चाहूंगा।
1: जी
0: दूसरा फायदा यह है कि यदि हमारे पौधे विभिन्न हाइट्स के हैं, यानी कुछ हाइट ऐसी हैं जिसमें अगर मेन यानी हाथ की मशीन से छिड़काव करें तो बागवानी के पौधे हैं या गन्ना है या फिर हमारी अरहर है जो स्प्रे करने में, या सरसों भी मतलब बड़ी हो जाती है तो वहां स्प्रे करने में कठिनाई होती
1: कठिनाई
0: है,
1: होती है जी,
0: लेकिन ड्रोन के द्वारा विभिन्न हाइट्स के पौधों पर भी आसानी से छिड़काव
1: किया जा
0: किया
1: सकता
0: जा सकता है। सर यही नहीं, इसमें यह भी है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फसलें खड़ी हैं जैसे धान है,
1: है। हाँ
0: सुगंधित धान होता है, उसमें सर्प बिच्छू इस तरह के कीड़े भी आ जाते हैं, जिनको यदि हम
1: गंद की वजह से
0: हाँ छिड़काव खुशबू की वजह से, जब हम छिड़काव अगर हाथ की मशीन से करते हैं तो वो कीटों के
1: खतरा
0: मतलब
1: जो है वो
0: हाँ
1: जो
0: वो
1: भी कर रहा है
0: ह्यूमन
1: जी
0: बींग्स को मतलब खतरा डेंजर्स कर सकते हैं, तो ड्रोन के द्वारा इस तरह के स्प्रे करने से
1: वो खतरे टल
0: वो
1: जाते हैं।
0: खतरे टल जाते हैं। यही नहीं, बेनिफिट ये भी है, चूंकि इसमें रसायन से किसान दूर रहते हैं, यानी वो टचिंग में नहीं है, टचिंग में नहीं है तो ह्यूमन बींग्स के स्वास्थ्य के लिए भी ये मतलब एक तरह
1: ये एक
0: का
1: बहुत बड़ा खतरा हुआ करता था
0: हाँ
1: जो हमारे किसान साथी हैं जो कीटनाशकों का छिड़काव है या जो भी उर्वरक हम खेत
0: हाँ
1: में देते हैं तो
0: जी
1: उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं
0: जी
1: तो उनकी
0: जी
1: वजह से कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं
0: बिल्कुल
1: जी, वो
0: बिल्कुल
1: सारी की सारी अब जो
0: सर
1: है।
0: सर ये जो है ये सारी दुर्घटनाएं जो है इसमें नहीं हो पाती हैं। दूसरा ये है कि इसमें केमिकल भी बचत होती है,
1: हाँ
0: इसमें
1: ये
0: जो
1: भी
0: है
1: है
0: जो मेन पावर से जो वेस्टेज होती है तो वेस्टेज नहीं हो पाती है,
1: ठीक बात।
0: पानी भी इसमें कम लगता है सर, मात्र 1 एकड़ में मतलब जैसे 10 से 15 लीटर पानी में ही हमारा जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से स्प्रे
1: अच्छा
0: होता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब एक चीज़ ये आ रही है मेरे ख्याल में, वो भी आपसे पूछ लेता हूँ कि ये तो रहा छिड़काव का या उसकी निगरानी का तरीका जो हम ड्रोन से कर रहे हैं,
0: जी
1: हम जो बुआई करते हैं
0: जी
1: वो भी तो हम ड्रोन के जरिए कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही मतलब अच्छी चीज कैच की, ये दो मेजर काम है, इसके अलावा इसके और भी सप्लीमेंट्री वर्क हैं। सप्लीमेंट्री वर्क में जैसे एक तो ये जो है हमारे यील्ड एस्टीमेशन करता है, यानी एक टेक्निक है उसको कहते हैं नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेरियन इंडेक्स, उसके द्वारा हम फसलों पर मतलब क्या उसकी पैदावार होने वाली है इसका आकलन कर सकते हैं।
1: कि हमारी
0: ये
1: फसल
0: हमारे
1: में हमने जितनी वो लागत लगाई है या जितना बीज बोया है हमारी फसल का कितना पैदावार हुआ करीब
0: हाँ,
1: करीब
0: यही
1: तक।
0: नहीं सर, इसका महत्वपूर्ण रोल ये भी है कि जैसे किसी तरीके से फसल अगर डैमेज हो रही है तो हम यील्ड एस्टिमेशन करने से हम उसकी हानि का
1: उसका भी अंदाजा लगा
0: अंदाज लगा सकते हैं, यानी क्रॉप इंश्योरेंस का और हमारा जो आपका मुआवजा है इनको दे मुआवजा को और उस क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी ये बहुत
1: आजकल
0: ही
1: जो सरकार की योजना चल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
0: सर सर
1: तो जो मुआवजा मिलता है वो शायद इसी अंदाजे से ही मिलता
0: हाँ
1: है, जो बीमा कंपनियां हैं वो
0: बिल्कुल
1: एस्टीमेशन इसी से ही करती होंगी,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: इसमें जो है बहुत क्या
0: यील्ड
1: कहें
0: एस्टिमेशन बहुत
1: बहुत
0: महत्वपूर्ण,
1: सटीक हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: महत्वपूर्ण मतलब इससे
1: हाँ
0: बारीकी से पूरा सटीक सब तरीके से एस्टिमेशन हो जाता है
1: तो
0: सर,
1: जो किसान का नुकसान है उसकी भरपाई
0: भरपाई
1: उसको
0: सर
1: बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो
0: बिल्कुल
1: जाती है
0: बिल्कुल
1: जी।
0: सर। एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा, सरकार इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से काफी कुछ प्रयास कर रही है।
1: अनुदान वगैरह
0: हाँ,
1: जी
0: उसमें सरकार के द्वारा 80% अनुदान, कुछ में 50% और कुछ में जो है 40% अनुदान की सुविधा है। इसका जनरली जो नॉर्मली कीमत है वो 10 लाख के करीब है
1: ड्रोन का
0: ड्रोन का,
1: अच्छा
0: यानी 80% का मतलब ये है कि इसमें 8 लाख का अनुदान, 50% में 5 लाख और 40% में 4 लाख का अनुदान दिए है। इसमें तरीके ये हैं कि जैसे 80% के लिए महिला कृषक समूह या फिर FPO या पंचायत समिति या फिर आपकी सहकारी समिति,
1: अच्छा
0: ये लोग इसमें 80% फायदा ले
1: ले
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं
0: दूसरा जैसे 50% वाला है, 50% वाले में हमारे सभी महिला कृषक, दूसरा SC ST, तीसरा लघु सीमांत और चौथा जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो होते हैं वो कस्टम हायरिंग सेंटर चलाना चाहते हैं।
1: जी
0: कस्टम हायरिंग सेंटर में ये है कि वो यंत्रों को लेकर के और किराए पर चलाना चाहते हैं,
1: ठीक बात।
0: तो ऐसे में भी मतलब ये जो है
1: अब
0: पचास
1: वो होता ही है कि छोटे किसान हैं वो
0: जी
1: अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक कोई जो आपने कहा कि
0: हाँ
1: कस्टम हायरिंग के लिए सेंटर बना लिया किसी
0: जी
1: ने
0: जी जी
1: वो उसको किराए पे उनको देता
0: बिल्कुल
1: रहेगा
0: बिल्कुल।
1: ठीक।
0: और बाकी 40% अनुदान में जो है सभी किसान जो अनारक्षित हैं वो सबको इंडिविजुअल, यानी ये 50% और 40% अनुदान जो है ये इंडिविजुअल
1: इंडिविजुअल
0: मिलता
1: को मिल
0: है
1: सकता है,
0: और 80% जो वो
1: FPO
0: ग्रुप
1: हुआ
0: ग्रुप पर
1: या जो
0: मिलता है
1: सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं
0: सर सर सर
1: उनको मिलेगा
0: बिल्कुल
1: या
0: बिल्कुल
1: जो सहकारी तरीके से खेती कर रहे
0: जी
1: हैं
0: जी एक
1: जी।
0: और है सर, मतलब हमारे सरकार के द्वारा प्रयास है कि कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों पर फ्री डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी ट्रायल के रूप में ये ड्रोन दिए जा रहे हैं।
1: माने किसान साथी वहाँ पर अपने नियर बाई कृषि विज्ञान केंद्र होगा निकटस्थ, वहाँ जाके
0: वहाँ संपर्क
1: डेमो
0: करके
1: दे सकते हैं,
0: फ्री फ्री मतलब डेमो
1: दे सकते हैं
0: उनको खेत में ये
1: कैसे करना है उसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी।
0: सर इसके साथ साथ कुछ ड्रोन से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं वो मैं देना चाहूंगा।
1: जी जी।
0: जैसे हमारे किसान भाई

0: ये चाहें कि हम ड्रोन को चलाने की हमें पायलट ट्रेनिंग नहीं है, तो सरकार के द्वारा और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ड्रोन चलाने के लिए पायलट ट्रेनिंग यानी उसको चलाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, 3-4 दिन की है।
1: क्योंकि क्योंकि स्पेशलाइज्ड काम है और
0: हाँ
1: मशीनरी इन्वॉल्व
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: टेक्नोलॉजी है उसमें, तो
0: बिल्कुल
1: किस तरह से आपको प्रॉपरली हैंडलिंग करनी है उसकी,
0: जी
1: वो
0: जी
1: उसकी भी ट्रेनिंग
0: वो
1: सरकार
0: ट्रेनिंग
1: मुहैया
0: दी जाती
1: कराएगी।
0: है। दूसरा सर ये है कि ड्रोन में यदि कोई खराबी हो जाती है या कहीं कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो कंपनी की तरफ से मतलब टोल फ्री नंबर है, उनमें 24 घंटे के अंतर मिस्त्री भी आ जाते हैं और उसके पार्ट्स भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
1: ठीक।
0: तीसरा सर जैसे सरकार ने कुछ थोड़ा सा एक जोन इसके बांट दिए हैं, यानी ड्रोन के प्रयोग के लिए 3 जोन निर्धारित हैं। पहला है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन यानी जो हमारे खेती योग्य जितने भी क्षेत्रफल हैं उनमें हम ड्रोन का प्रयोग बेझिझक

0: जितने भी क्षेत्रफल हैं उनमें हम ड्रोन का प्रयोग बेझिझक बिना किसी परमिशन के कर सकते हैं।
1: ठीक।
0: दूसरा है हमारा येलो जोन। येलो जोन में जैसे आबादी क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में यदि हमारी कुछ फसलें हैं तो हमें थोड़ा परमिशन की वहां आवश्यकता,
1: क्योंकि उसमें खतरा इन्वॉल्व होता है, कीटनाशकों का छिड़काव
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए वो जरूरी भी है।
0: तो वो थोड़ा परमिशन लेनी पड़ती है। तीसरा जोन है रेड जोन।
1: हाँ।
0: रेड जोन में ड्रोन का प्रयोग जो है वो प्रतिबंधित है। रेड जोन में क्या आते हैं, जैसे कहीं जहां हवाई पट्टी है या फिर
1: एयरपोर्ट वगैरह
0: हाई पावर की मतलब बिजली की लाइन
1: टेंशन,
0: है,
1: हाई टेंशन लाइन्स
0: हाँ,
1: हैं,
0: तो ऐसे में थोड़ा सा
1: खतरा इन्वॉल्व है,
0: हाँ
1: तो आपको वहां पर वो रेड
0: जी
1: जोन घोषित कर
0: जी
1: दिया गया, सरकार ने वहां प्रतिबंध लगाया
0: जी
1: हुआ
0: जी
1: है।
0: जी
1: ठीक बात।
0: तो इसके प्रयोग में भी साहब थोड़ा सा सर कुछ सावधानियां रखनी है। वो सावधानियां ये हैं कि एक तो जो है जो हम ड्रोन का प्रयोग करने से पहले बैटरी को थोड़ा चेक कर
1: चार्ज
0: ले।
1: कर लें।
0: दूसरा यह है कि तेज हवा तेज वर्षा में इसका प्रयोग न किया जाए। तीसरा यह है कि जैसे बिजली की यदि हाई टेंशन लाइन और मतलब इस तरह का है तो उससे थोड़ा सा
1: दूर बचाव
0: दूरी
1: जो है
0: दूरी
1: जरूरी है।
0: बचाव रखा
1: हाँ,
0: जाए।
1: सेफ्टी
0: इसको
1: जरूरी है,
0: हाँ इसको ऑपरेट करने के लिए मतलब रिमोट का प्रयोग
1: किया जाता
0: किया
1: है।
0: जाता है। सर एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे हमारे ये फसल स्वास्थ्य की निगरानी, तो निगरानी के लिए इसके कुछ स्टेप हैं यानी कैसे काम करता है। इसमें पहला स्टेप ये है कि ये पहले मतलब एक तरह का मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरे से ये नक्शा तैयार करता है, ठीक है, बारीकी से नक्शा तैयार कर
1: मतलब
0: लिया
1: ये जो ड्रोन है इसी
0: जी
1: में ही कैमरे का भी उपयोग करके आप उसकी निगरानी सर्विलेंस कर सकते हैं, फिर इसी में ही जो है आप छिड़काव के लिए वो पेस्टिसाइड या जो भी जिसका भी आपको छिड़काव करना है वो
0: जी
1: उसमें आपते हैं,
0: ये
1: है ना,
0: मल्टीपर्पज है,
1: मल्टी टास्क
0: हाँ
1: है।
0: मल्टी टास्क है इसमें कई,
1: ठीक बात।
0: तो
1: अच्छा,
0: ये
1: ये जो
0: सर
1: चीज़ें हैं आपने कहा जैसे एस्टीमेशन करते हैं, तो
0: हाँ
1: इसके
0: जी
1: लिए तो जाहिर सी बात है कि आजकल डेटा का ज़माना है, तो
0: हाँ
1: वो जो डेटा कलेक्शन और डेटा का एनालिसिस है, और
0: हाँ
1: आजकल एआई के भी बहुत सारे टूल्स हैं, एआई का भी बहुत इंक्लूजन हो रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: वो उसके लिए क्या मतलब किसान साथियों को कैसे
0: जी
1: वो
0: जी जी
1: चीज़ें
0: बहुत
1: समझ।
0: बहुत बहुत बहुत मार्केबल क्वेश्चन है सर।
1: जी।
0: देखिए इसमें सबसे पहले स्टेप ये है कि हम फसलों का मतलब एक तरह का सर्वे अपना उससे करते हैं। सर्वे में जो कैमरे के द्वारा सारी सूचनाएं हमने कलेक्ट कर ली,
1: ठीक।
0: उसके बाद सूचनाएं और मैप बन गया, उसके बाद उसका एनालिसिस उसका मतलब हमने विश्लेषण किया, और विश्लेषण के बाद फिर हम एआई का प्रयोग करके हमें वो जो समस्याएं हैं उनका क्या सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमने तलाश लिया
1: और उसमें जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां के वैज्ञानिक जरूर
0: जी
1: मदद करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ठीक।
0: वो हमने उसका एनालिसिस मतलब उसका करके
1: हाँ,
0: और सॉल्यूशन तलाश के बाद फिर हमें निर्णय यानी डिसीजन
1: क्या
0: जो
1: लेना
0: हमारा
1: है।
0: राइट डिसीजन है उसके आधार पर हम अगला कदम उठा के हम अपने फसलों की बेहतर स्वास्थ्य को मेंटेन कर लेते
1: ठीक बात। और
0: जी
1: आपने सावधानियां बताई दी हैं, क्योंकि ड्रोन छोटा आइटम है,
0: जी
1: हल्के
0: बिल्कुल
1: आइटम है,
0: जी जी
1: तो तेज हवा में नहीं चलाना है,
0: जी जी
1: और बारिश वगैरह में अवॉइड करें चूंकि बैटरी ऑपरेटेड होते हैं,
0: जी जी
1: और हाई टेंशन लाइंस हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखनी है,
0: जी
1: और
0: जी
1: साथ ही साथ जब आपको उपयोग में लाना है
0: जी
1: तो ये सुनिश्चित कर लें कि हमारी उसकी बैटरी जो
0: बैटरी
1: है वो पूरी तरह से चार्ज है या नहीं। और कोई संदेश जो
0: जी
1: आप हमारे किसान साथियों के साथ साझा करना चाहें।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं किसान भाइयों से ये अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा कि चूंकि ये कृषि में एक बहुत ही ड्रोन की प्रयोग जो है क्रांतिकारी तकनीकी है, किसान इससे डरे नहीं, इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग करने से किसान भाई का स्वास्थ्य तो बेहतर रहता ही है, उसकी पैदावार भी बढ़ती है, उसकी समय धन ऊर्जा की
1: बचत
0: बचत
1: होती है।
0: होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई इसका प्रयोग करें और सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं यानी
1: उनका पूरा
0: अनुदान,
1: पूरा लाभ
0: उनका
1: उठाना वो
0: पूरा
1: किसान
0: लाभ
1: की जिम्मेदारी
0: अनुदान पर
1: है।
0: भी लें किराए पर भी लेकर के और इसका प्रयोग करें। तो मेरा अंतिम यही किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप हमारी जो आधुनिक तकनीकी है खेती
1: उसमें
0: में ये
1: बिल्कुल
0: क्रांति आ जाए।
1: हिचकिचाए नहीं।
0: जी जी जी
1: जी डॉक्टर साहब,
0: तो
1: तो किसान साथियों, आज आपने जो ड्रोन की तकनीकी है उसका किस तरह अपनी खेती के लिए उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इस पर डॉक्टर साहब के जो विचार हैं वो सुने। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान साथियों के साथ हमारे साथ आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: सर आपको भी नमस्कार और किसान भाइयों को नमस्कार।
2: अभी आपने ये भेंट वार्ता सुनी, ड्रोन तकनीक से फसल स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी, पूर्व निदेशक कृषि डॉक्टर राधेश्याम सिंह से अनिंद्र सिंह की बातचीत। साथियों हमें उम्मीद है कि आपने इस उपयोगी भेंट वार्ता को ध्यान से सुना होगा और आप इसका अवश्य लाभ लेंगे। और अब समय है आज के मंडी भाव की जानकारी देने का। गेहूँ 3,090 रुपये से 3,100 रुपये प्रति कुंतल, चावल 4,200 रुपये से 4,210 रुपये प्रति कुंतल, मसूर दाल 7,700 रुपये से 7,910 रुपये प्रति कुंतल, अरहर दाल 9,300 रुपये से 9,610 रुपये प्रति कुंतल, उड़द दाल 9,650 रुपये से 9,800

₹90 प्रति क्विंटल, मूंग दाल ₹9,500 से ₹9,760 प्रति क्विंटल। और अब आपको मौसम की जानकारी दे दें, आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली रही, अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और साथियों फिर से चलते हैं लोकगीत की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत मिथिलेश के स्वर में।

और साथियों, मिथिलेश के गाए हुए इस मधुर लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अनुमति दीजिए सभी को मुक्ता सिकरवार की राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजू बाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताएं साथियों, कैसे हैं आप? हमें पता है कि मौसम चाहे कोई भी हो, काम कम हो या ज्यादा, थकान हो या बीमारी की स्थिति, आप हर हाल में अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। ये आपकी आदत में आ चुका है, इसीलिए सुबह जल्दी उठना, तैयार होकर काम पर जाना आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। वैसे साथियों, अच्छी आदतें हमारे जीवन को व्यवस्थित रखती हैं, लेकिन अब देखने में आता है कि लोग माहौल बदलने के कारण बुरी आदतों का शिकार होते जा रहे हैं, और बुरी आदतों का असर भला अच्छा तो हो नहीं सकता। तो क्यों ना अच्छी आदतों पर टिके रहें, तो पूरे परिवार को लाभ होगा, परिवार तरक्की की राह पर चलेगा। अब देखिए ना, बचत भी एक अच्छी आदत है, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि दिखावे और बढ़े हुए खर्च के कारण बचत करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। साथियों, हम जानते हैं कि इस स्थिति के और भी कई कारण हैं, पर चाहे किसी की कितनी भी आय हो, फिर भी हर किसी के लिए बचत करना जरूरी है, और हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए तो ये बेहद जरूरी है। सोचने की बात ये है कि जब आय ही कम हो तो क्या किया जाए, ये सवाल आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। साथियों, आप सही हैं अपनी जगह, भाई मुश्किल तो होता है, सच्चाई तो यही है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी परेशानी के समय कितने लोग मदद के लिए आगे आएंगे और हम किसी की कितनी मदद कर पाते हैं जो अपने साथियों से हम उम्मीद करें। तो भैया, परेशानी कह कर तो आती नहीं है, इसीलिए सबको अपने बारे में खुद ही सोचना चाहिए, और घर में एक गुल्लक रखनी चाहिए, उसमें रोजाना पैसे डालें या कोई बचत खाता खुलवाएं, उसमें हर 10-15 दिन में कुछ पैसा जमा कराएं और कोशिश करें उसे बैंक से ना ही निकालें। घर में बच्चों को शुरू से ही बचत की आदत डालें, फिजूल खर्ची से बचें और बजट बनाकर घर का खर्च करें। किसी के कहने में आकर फालतू खर्च ना करें, दूसरों को देखकर बिना जरूरत की चीजों पर खर्च ना करें। साथियों, अपनी मेहनत की कमाई को बुरी आदतों में ना उड़ाएं, पैसा बचाएं, क्योंकि आज की गई बचत आपके परिवार का भविष्य संवार देगी। बेशक थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, पर आपको पता होना चाहिए कि आपके खर्च कोई और नहीं उठाएगा। तो श्रमिक साथियों, बचत आपके लिए नए रास्ते बनाएगी जिस पर चलकर जीवन आनंदमय हो सकता है।

हाँ तो साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और श्रमिक और बचत विषय पर चर्चा भी हो गई। कार्यक्रम में तो आज बहुत कुछ है, तो पहले क्या लें, तो चलिए पहले प्रश्न ही पूछ लें, फिर आपको सोचने का समय भी मिल जाएगा। तो चलिए बताइए, प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? वैसे हमने आसान सवाल पूछ लिया है, इसी से संबंधित हम कुछ और पूछने वाले थे। चलो आपके लिए अच्छा है, और अब हम चलते हैं आज की पाती की ओर और आपको बताते हैं कि एक श्रमिक परिवार से हमारी क्या क्या बातें हुई। दरअसल हमारे घर के पड़ोस में ये श्रमिक

0: परिवार काम कर रहा था। हम अपनी पड़ोसन के पास किसी काम से गए तो वो भी पूरा घर दिखाने लगी। उनका घर देखते देखते हमारी बात श्रमिक बहन से भी होने लगी। उसका बच्चा बीमार था, उसे वो साथ ही लाई थी। हम उनसे उनकी दिनचर्या की बात करने लगे, फिर रहन सहन की बातें होने लगी। तो उन्होंने बताया कि ऐसी गर्मी और लू के दिनों में वो कैसे अपना बचाव करते हैं। उन्होंने बताया कि वो किसी पुरानी चादर को पर्दे के रूप में टांग लेते हैं, फिर उसे गीला करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि लू का असर कम हो और ठंडक का एहसास हो। साथ ही जब उनके बच्चे को बुखार होती है हो जाता है तो उन्होंने बताया कि बुखार में हम पैरों के तलवों और हाथों की हथेलियों और माथे पर देसी घी लगा देते हैं, या फिर बच्चे की बाहों और टांगों पर, माथे और पीठ पर चिकनी मिट्टी को गीला करके मल देते हैं, और जब वो सूख जाए तो गीला कपड़ा हाथों और पैरों पर रखते हैं। उनसे बातें करके हमें यही लगा कि इन्हें भी बहुत सारे घरेलू नुस्खों की जानकारी होती है। ज़्यादा कुछ खर्च किए बिना ही ये गर्मी में स्वस्थ रहने के तरीके अपनाते हैं। वैसे साथियों, पुराने समय में जब कूलर एसी नहीं होते थे तो ज़्यादातर लोग ये तरीके अपनाते थे, और चिकनी मिट्टी तो वैसे भी त्वचा को ठंडक देने के लिए अच्छी मानी गई है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और इससे घमोरियाँ, तेलीय त्वचा और मुहासों में भी राहत मिलती है। वैसे साथियों, बात जब स्वास्थ्य की हो ही रही है तो क्यों ना स्वास्थ्य पर आधारित सेहतनामा की ओर रुख कर लिया जाए। तो साथियों, हमने महिलाओं के स्वास्थ्य पर आपको जानकारी देने के लिए पोषण विशेषज्ञ ललित कौशल से बात की, तो आइए सुनिए। हैं कि मातृ दिवस पर सभी माताओं को उपहार देते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उपहार है माता का स्वास्थ्य। और आज मैं एक पोषण विशेषज्ञ ललित कौशल से मिली, तो आइए सबसे पहले करते हैं उनका स्वागत। तो सबसे पहले नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
0: तो आप सबसे पहले ये बताइए कि एक माँ जो घर की धुरी होती है और सभी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखे?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने
0: जी।
1: देखिए, घर की कोई भी लेडीज हो, माँ हो, जब भी अगर आपने नोट किया हो कोई बीमार पड़ती है, कोई दिक्कत आती है, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, हिल जाता है। तो ये हर बच्चों की, अगर जो भी हमें सुन रहे हैं, तो बच्चों की, जेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर की माताओं बहनों का पूरी तरह से ध्यान रखे। और माताओं को, बहनों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना खाना प्रॉपर होना चाहिए। सुबह कई बार देखा है कि बच्चों को खाना दे देती है, हस्बैंड बचाए तो खा लिया, नहीं तो अपने में आलस करती है। ये सबसे खराब एक शुरुआत होती है सुबह ब्रेकफास्ट से ही। तो अपना प्रॉपर डाइट लें, जो उनके खाने में जो भी उनके घर में बनता हो, सारी मील्स अगर प्रॉपर लेंगी तो काफी हद तक हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं। छाछ हो गई, दही हो गई, इस टाइप की चीजें हैं, वो जरूर खुद से भी कंज्यूम करें तो काफी हद तक वो सही रहते।
0: अच्छा, कैसे ये महिलाएं निश्चित करें कि उनकी जो थाली है, जो वो खा रही है, तो वो जो भी खा रही है उसमें उन्हें पूरा पोषण मिल रहा है, ये कैसे वो डिसाइड करें? क्या उसमें उन्हें कितना कैल्शियम चाहिए, कितना आयरन चाहिए, फिर उन्हें कई चीजों की कमी भी हो जाती है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए उनकी थाली में?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि सभी को इतनी नॉलेज नहीं होती। तो कुछ चीजें अगर हम ध्यान रखें तो हम इससे बच सकते हैं, इस प्रॉब्लम से। आज अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो हमारे खाने में आप देखिए फास्ट फूड हर जगह बढ़ गया है। आप अगर गाँव में भी जाते हैं तो गाँव में भी अवेलेबल है चाउमीन, पिज्जा, इस टाइप की चीजें। तो उसमें होता क्या है, क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी कम हो गई है। इसमें एम्प्टी कैलोरीज है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स बहुत कम है। तो सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि हमें बाहर का कम से कम खाना है, ठीक है? और घर अगर आप खा रहे हो तो खाने की प्रॉपर वेराइटीज होनी चाहिए। जैसे दाल, हमारा नेचर ने देखा आप दाल अलग नहीं खाते, चावल अलग नहीं खाते, रोटी सब्जी दाल चावल, दाल और चावल दोनों जब मिला के खाते तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड उसमें पूरे मिलते। इडली सांभर के साथ मिला के खाते तो उसमें 9 एसेंशियल पूरे मिलते। इस तरीके से कॉम्बिनेशन घर का ये पूरा लेना चाहिए। अलग कलर के फ्रूट्स लेने चाहिए। एक कहावत है, रीजनल खाएं और सीजनल खाएं, यानी आपके रीजन में आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या पैदावार अच्छी होती है, कौन सा फ्रूट है वहाँ पर अवेलेबल। मैं जैसे मान लीजिए कोई नागपुर में वहाँ संतरा आराम से मिल जाता है, ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब ऐसी चीजों से बचें जो कि

0: ये मौसम की जैसे होती है ना, कोल्ड स्टोरेज से आ रही है, तो रीजनल यानी उस रीजन में, सीजनल उस सीजन में, जो जिस सीजन का फूड है उसको कंज्यूम करें, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, क्योंकि लेट्स के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है, आयरन की डेफिशिएंसी बहुत रहती है, कैल्शियम की बहुत रहती है, तो सारा चीज अलग अलग वेराइटी से अगर लें तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है जैसे बैठ के उठ रहे हैं चक्कर आ रहे हैं, ये हो सकता है, तो ये एक आयरन की डेफिशिएंसी को इंगित करता है, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके से चेकअप कराएं, और उनका अगर हीमोग्लोबिन कम है तो स्वास्थ्य केंद्रों पे हीमोग्लोबिन के लिए आयरन टैबलेट्स या न्यूट्रिशन भी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए उनको, जो उनको रिकमेंड किया जाए।
1: अच्छा, वैसे कहते हैं कि महिलाओं को मतलब अपना कुछ ना कुछ चेकअप वगैरह अगर कराते रहना चाहिए, तो ऐसे कौन से चेकअप है जो कि वो साल में एक बार कराएं या छह महीने में एक बार कराएं, या कोई ऐसे लक्षण हो जो उनको दिख रहे हो तो वो कुछ चेकअप कराएं, वो कैसे पहचाने?
0: देखिए, आफ्टर 35-40 ऐसा बोला जाता है कि साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप उतने पैसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में भी ऐसा हो सकता है, तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक सिम्टम बताया था, बैठ के उठने पे चक्कर आना, आपके बाल जड़ना, स्किन का डल होना, तो ये न्यूट्रिशनल गैप को बताता है कि आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, कहीं पेन हो रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई सिम्टम है तो जरूर कराना ही, एटलीस्ट B12, D3 की डेफिशिएंसी आज ज्यादातर लोगों में है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया था, 80-90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी, और लेडीज का लेवल तो उसमें परसेंटेज और ज्यादा ही है। D3, B12 ज्यादातर लोगों में कम है, लेडीज का भी कम रहता है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो चांसेस हैं कि और ज्यादा कम हो, तो इनका चेकअप तो कराना ही चाहिए।
1: जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मातृ दिवस की, तो जो नई माताएं हैं वो किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें?
0: देखिए, अगर नई माताएं, अच्छी बात है, आगे वो एक नई जिंदगी को लाने वाले हैं धरा पर इस दुनिया में, तो उनकी जिम्मेदारी डबल बनती है, अपने साथ अपने उस बच्चे की भी स्वास्थ्य को सही रखना, क्योंकि उसका आगे आने वाला भविष्य उन 9 मंथ्स में भी काफी कुछ डिसाइड होता है। अगर उस वक्त न्यूट्रिशनल गैप रह गया, कई बार क्या होता है ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, मान लीजिए आपने बी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नहीं लिया, फॉलिक एसिड नहीं लिया, तो न्यूरल ट्यूब जो बच्चे की होती है वो सही से नहीं बन पाती, कई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बच्चे में, तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने खाने में अलग अलग वैरायटी जैसे सोया पनीर, दूध दही ये ऐड करें, और प्रेगनेंसी के टाइम अपना हीमोग्लोबिन टाइम टू टाइम जरूर चेक कराएं। वैसे तो उस वक्त होता क्या है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हीमोग्लोबिन कम होता है, उस वक्त जरूरी है उनका हीमोग्लोबिन लेवल को सही करना, जैसे ऑक्सीजन का फ्लो हर सेल में प्रॉपर मिलता रहे, और किसी एक अच्छे डॉक्टर के कंसल्टिंग में रहने से वो सारे चेकअप उस हिसाब से प्रेगनेंसी के टाइम पे कराते रहेंगे, क्योंकि बच्चे का फॉर्मेशन इन्हीं सभी चीजों से, तो खाने में प्रोटीन सोर्सेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं।
1: सुबह सुबह जैसे महिलाओं को बहुत सारे काम होते हैं, वर्किंग है तो उन्हें भी जाना है, सुबह के टाइम जो उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है अपने नाश्ते को बिल्कुल भूल जाती हैं, और उन्हें करना चाहिए, और ना करने से क्या उनको परेशानियां हो सकती हैं आगे?
0: नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे अगर कोई प्लेन में यात्रा कर रहा है तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक अनाउंस होता है कि अपनी सीट बेल्ट पहले लगाएं, पहले अगर खुद को सेफ्टी करेंगे आप किसी और को नहीं कर सकते, तो माताओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप घर के एक तरह से पायलट हो, बिल्कुल आप अगर खुद सही नहीं हो तो किसी को नहीं करोगे। तो ब्रेकफास्ट के बारे में आपने सुना होगा, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है, हमने फास्ट का ब्रेक किया, हमने पूरी रात कुछ नहीं खाया, भोजन का मतलब जो हमें एनर्जी दे और न्यूट्रिशन दे, वो ऐसे सोर्स ऐड करने हैं। सिर्फ कई बार मार्केट का खा लेते हैं या पिज्जा बर्गर इस टाइप से खा लेते हैं, जल्दी फटाफट नूडल, वो ना होके घर का प्रॉपर मील बनाना चाहिए। डाइट को कलरफुल बनाएंगे आपकी लाइफ कलरफुल बन जाएगी।
1: बहुत अच्छी बात कही है आपने, तो मतलब ये जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ खाएं।
0: एक तो पोजीशन है कि आपको भूख नहीं लग रही तो कोई प्रॉब्लम हो सकती, लेकिन आप इसलिए नहीं खा रहे कि मैं अभी खा लूंगी हाँ। तो आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को प्रॉब्लम में डाल रहे हो आगे चल के, तो कोशिश करें आप इसको इग्नोर ना करें, सबको ध्यान रखते हुए। और मैं उन बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी माताओं का ध्यान रखें, और खुद खाते हो अपनी माता जी से पूछे कि मम्मी पहले आप खाओ मैं तब खाऊंगा, तो एक सबसे बड़ा उपहार तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से।
1: यानी कि महिलाओं की जो थाली है वो भी संतुलित होनी चाहिए, पोषण से भरपूर होनी चाहिए,
0: उनकी और ज्यादा होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जिस तरह से माँ या महिला पूरे घर का ध्यान रखती है, बाकी जेंट्स को चाहिए कि वो भी उस घर की महिला का उतना ही ध्यान रखे,
1: और मिलजुल कर जब सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और
0: सभी स्वस्थ रहेंगे,
1: सब स्वस्थ रहेंगे
0: तो पूरा देश स्वस्थ रहे।
1: आपने हमको ललित जी इतनी सारी बातें बताई महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में स्पेशली, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका।
0: नमस्कार।
1: जैसा कि आप सब जानते हैं कि

0: मात्र दिवस।
1: हाँ तो साथियों, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उपहार यही है कि वो हम उनके खान पान का ध्यान रखें। और साथियों, आपको पता ये चला कि हमारी महिलाओं को खाने में क्या क्या खाना चाहिए और ताकि उन्हें किसी तरह की कमी ना हो। ललित जी ने बहुत सटीक जानकारी दी। हमें आशा है आप इनकी बताई बातों को ध्यान में रखेंगे ताकि घर की महिलाएं स्वस्थ जीवन जी सकें। वैसे साथियों, महिलाओं का साथ देने की भी बात कही गई है। उस हिसाब से आजकल के समय में तकनीक के विकास के कारण ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं जिससे जीवन सरल हो रहा है, सुविधाजनक हो रहा है। अगर महिलाएं ऐसी नई चीजों को अपनाएंगी तो उन्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी। और वैसे भी आज प्रौद्योगिकी दिवस है और ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम नई तकनीक के महत्व को समझें। और यही हमारे आज के प्रश्न का उत्तर भी है। साथियों, जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, तरह तरह के यंत्र बनने लगे और यहाँ तक कि सुविधाओं के अलावा सुरक्षा से संबंधित यंत्र भी आज हर देश के पास हैं, ताकि हर किसी के पास अपनी सुरक्षा करने का प्रबंध इतना हो कि कोई पड़ोसी देश उस पर हावी ना हो सके, बल्कि दोनों में समानता और प्रेम बना रहे और दोनों एक दूसरे का पड़ोसी के नाते सहयोग करें। श्रमिक साथियों, जब आप भी कुछ नया या अच्छा बनाते हैं तो बहुत संभाल कर उसे रखते हैं, यानी उसकी सुरक्षा के प्रबंध करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा के प्रबंध करें, वरना हमारा देश तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। इस दिन को साथियों मनाने की घोषणा जो है वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1998 को की। उस समय राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिसमें से 3 परीक्षण 11 मई को किए गए यानी कि आज, जबकि 2 परीक्षण 13 मई को किए गए। और आज के दिन किए गए परीक्षण सफल रहे और तब से लेकर आज तक हमारे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे आज ही के दिन यानी 11 मई को मनाया जाता है। साथियों, अब इस दिन को देश भर में मनाया जाता है धूमधाम से। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज के दिन हमें इतनी तरक्की इस दिन ने दिलाई और दुनिया के प्रगतिशील देशों में हमें खड़ा कर दिया। तो साथियों, आज ज्ञान सागर में इतना ही और अब फिर चलते हैं वहीं उस श्रमिक परिवार की पसंद का गीत सुनते हैं, क्योंकि हमने उन्हें वादा किया था और आज की पाती में हमने उनसे बातचीत की थी। तो आइए सुनिए ये मधुर गीत।

तो साथियों, हम जिस श्रमिक परिवार की बात कर रहे थे जिन्होंने इस गीत को पसंद किया था, उनका नाम है मोना, रजनी, विजय, सुमन, बाबू और अतुल। आप सब आगे भी कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और हमें पत्र जरूर लिखेंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं संपन्न

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ौदरा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन

0: The summit in New Delhi, the minister urged industry leaders to actively support global big cat conservation efforts.
1: Next June 1st and 2nd, India will be hosting the first World Summit of International Big Cat Alliance. IBCA is Prime Minister Shri Narendra Modi Ji's initiative to save the 7 big cats of the world. Corporate funding is essential to support critical areas of big cat conservation such as habitat restoration, technology-driven monitoring and surveillance, community-based conservation, capacity building and conservation awareness. I urge you all to come forward to save the big cats, because the big cat maintain ecological balance, protecting vast landscape, biodiversity and water resources.
0: India continued to hold the number one position in the latest ICC Men's ODI team rankings following the annual update released today. However, the lead over New Zealand has reduced from 8 to 5 points. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118, while New Zealand gained 2 points, moving up to 113. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो जयंती पर केंद्रित वार्ता, समाज का निर्मम आईना है मंटो की कहानियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर शिवचंद्र प्रसाद।
3: आज हम उर्दू के अफसाना निगार सयादत हसन मंटो की कहानियों पर विचार करने जा रहे हैं। सन 1936 में प्रगतिशील और यथार्थवादी हिंदी लेखकों के साथ उर्दू के अदीबों मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद जहीर, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, उपेंद्रनाथ अश्क आदि ने अपने साहित्य से समाज को मशाल दिखाने, शोषण उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने और शांति सद्भाव अमन चैन की स्थापना करने का कार्य किया था। कालांतर में यही कार्य सयादत हसन मंटो ने किया। इस दृष्टि से वह प्रेमचंद परंपरा के सच्चे संवाहक हैं। ध्यान रहे मुंशी प्रेमचंद ने भी ईदगाह और गौदान से उर्दू में शुरुआत की थी। जब हम मंटो के अफसानों और उनकी बेचारकी पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि वे उर्दू के चुनिंदा अफसाना निगारों में से में अपना खास स्थान रखते हैं। सामासिक रूप में जाने तो 11 मई 1912 में अभाज्य पंजाब लुधियाना के समराला गांव में जन्म हुआ। जलियान वाला बाग कांड से इतने द्रवित हुए कि उन्होंने तमाशा नामक कहानी लिखी जो बाद में चर्चित हुई। सन 1936 में मुंबई प्रस्थान किया, पुनः 2 वर्ष के लिए दिल्ली आए, लेकिन राजधानी रास नहीं आई तो वापस मुंबई की ओर लौट गए। वहां विभिन्न फिल्मी संस्थानों में कार्य किया, मुसव्वर फिल्मी पत्रिका का संपादन किया। अंत में बॉम्बे टॉकीज में पटकथा और AIR के लिए कहानी लेखन का कार्य किया, जो बाद में कहानियां प्रकाशित भी हुईं। मंटो पर विचार करें तो वे मुंशी प्रेमचंद और मैक्सिम गोर्की की तरह शोषित, पीड़ित, दलित संवेदना के अफसाना निगार हैं। उनकी कहानियां कट्टर संप्रदायवाद और नफरती उन्माद के बरखिलाफ हैं। उनके यहाँ स्याह, सफेद, श्लील, अश्लील सब कुछ है और जो कुछ है वह कट यथार्थ है। उनके वहाँ गुरुमुख सिंह, राम खेलावन, मोहम्मद भाई, टोबा टेक सिंह, मर्द औरतें, यहाँ तक कि वैश्याएं, तवायफें, ठंडा गर्म गोश्त सब कुछ है। न किसी से हिकारत, न किसी से परहेज। बस जहाँ अनाचार, दुराचार, शोषण और उत्पीड़न है वहाँ मंटो उनके विरुद्ध खड़े हैं। 14 अगस्त 1947 की अर्धरात में जब भारत के 2 टुकड़े हुए, मंटो के भी दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मंटो चूंकि टेढ़ी राह वाम पथ पर चलने वाले थे तो जाहिर है मजहबी सियासत की इन पर टेढ़ी नजर तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सियासत का दबाव पड़ा कंपनी पर और निष्कासन की नौबत आई तो अपने टूटे बिखरे सपनों को लिए मंटो कराची पाकिस्तान चले गए। सच्चाई यह है कि वे अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। अपनी इस मर्मांतक पीड़ा को उन्होंने अल्फाजों में बयां किया है, मेरे लिए यह तय करना नामुमकिन हो गया है कि दोनों मुल्कों में अब मेरा मुल्क कौन सा है। मंटो 18 जून 1955 को इस जहां से विदा हुए। उनके सवाल लगभग 80 वर्ष बाद आज भी अनुत्तरित हैं। मंटो की इस व्यथा को उनकी कहानी टोबा टेक सिंह व्यक्त करती है। कथानायक बिशन सिंह के रूप में स्वयं मंटो ही हैं। पागल करार दिए गए विशन सिंह का एकमात्र सवाल है कि उसकी जन्मभूमि

0: टोबा टेक सिंह कहाँ है और बार बार इसी प्रश्न को दोहराने के कारण उसका नाम ही टोबा टेक सिंह पड़ जाता है। यही सवाल तो मंटो का भी है। बिशन पूछता है कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान का है, और अगर पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि कुछ समय यही रहते हुए भी वह हिंदुस्तान में था। वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसका कहना है, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, इस पेड़ पर ही रहूंगा। ठूस लो अपना गुलिस्ता कान में, हम तो दरख्तों पर भी आसियां बसा लेंगे। वह टुकड़े टुकड़े करने वाले नेताओं को गालियां बकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो पार्टों के बीच में पिसकर टोबा टेक सिंह यानी बिशन सिंह की मौत हो जाती है। यह कहानी एक संदेश दे जाती है कि सरहदें बेशक बांटने का काम करती हैं, पर मोहब्बत के लिए कोई सरहद नहीं हुआ करती। मंटो कुछ कड़वे मिजाज के कहानीकार हैं। उनके यहाँ तलखियां, कूर सच्चाई, अकट यथार्थ, नंगा सच और बेचैनियां हैं जो सहज स्वीकार नहीं है, क्योंकि मीठी गोली नहीं बल्कि कड़वी दवा है मंटो की कहानियां। उनकी कहानियां समाज के निर्मम यथार्थ का आईना है, जिसे तथाकथित संभ्रांत जड़ यथा स्थितवादी भद्र लोग सहज स्वीकार नहीं कर पाता है। अब देखिए ना, दंगों और सांप्रदायिक उन्माद पर मंटो ने बहुत कुछ लिखा है, पर निष्कर्ष अन्य लोगों जैसा पूर्व नियोजित अथवा संभावित नहीं है। कुछ अजीब मनोमस्तिष्क को झन्ना देने वाला और आत्मा को झिझोड़ने वाला है उनकी एक कहानी है, खोल दो। शीर्षक से ही कई सवाल उठते हैं, क्या खोल दो, कहाँ खोल दो, कौन बताए, किसे खोल दो। कहानी की पृष्ठभूमि दंगा है। अफरा तफरी, खून खराबे और कतलेआम के बीच नायक सराजुद्दीन की बीवी का कत्ल हो जाता है। सराज बेहोश है, उसी आलम में उसकी इकलौती बेटी सकीना गायब हो जाती है। सराज के आंसू सूख जाते हैं। रजाकार नौजवानों का एक झुंड उसे खोलने और मिलवाने का वायदा करता है। सराज उसका हुलिया बताता है, गोरा रंग, बला खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, स्याह बाल, गाल पर तिल। नौजवान ढूंढ भी लेते हैं, पर उसके हुस्न पर नियत ढोल जाती है उनकी और बलात्कार करते हैं। मृतावस्था में वह हॉस्पिटल पहुंचती है। सिराज भी वहां पहुंचता है। कमरे में अंधेरा है, तभी डॉक्टर रोशनी करता है, पूछता है, कौन? तो इसका बाप। मंटो की ऐसी कहानियों पर लोग अश्लीलता का आरोप लगाते हैं, परंतु कहानी का असली मर्म क्या है आप लोग स्वयं देखिए। डॉक्टर ने नब्ज टटोली, सकीना के मुर्दा जश्न में जुम्बिश हुई, बेजान हाथों से उसने जार बंद खोला। क्या बीती होगी इस दृश्य को देख करके उसके बाप पर, क्या बीती होगी सहृदय पाठक और संवेदनशील व्यक्ति पर, क्या इंसान और इंसानियत की इतिश्री नारी के मात्र 3.5 हाथ के शरीर की चीर फाड़ करने में ही है। सलवार नीचे सरकाने में कैसी बेवश वेदना है, निराला की मार खा रोई नहीं जैसी। निराला ही एक और जगह पर लिखती हैं, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी। इस कहानी का अंत भी बहुत कुछ कहता है। यही कारण है कि मंटो समाज के निर्मम यथार्थ की अफसाना निगार है। उन्माद और फिरका परस्ती के विरुद्ध शांति और इंसानियत के पुजारी हैं। उनके यहाँ एक तरफ बलात्कारी और बलवाई रजाकार और ईश्वर सिंह जैसे लोग हैं, तो गुरुमुख और मोहम्मद भाई जैसे विश्वास पात्र और सहयोगी भी तो हैं। सहाय कहानी का मुमताज जो कहता है वह मार्के का है। यह मत कहो कि 1 लाख हिंदू 1 लाख मुसलमान मरे हैं, यह कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं। उधर मोहम्मद भाई एक बार फिर जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी की याद दिलाते हैं। उधर बू कहानी की बू को खुशबू में बदलने की महारत मंटो जैसे अदीबों में ही हो सकती है। इतने में इतना ही हो सकता है, सिर्फ एक चावल टटोल कर भात पकने का अंदाजा लगाया जा सकता है, और इतना भी कम नहीं है, क्योंकि नूर की एक किरण जुल्म पे भारी होगी। नूर की एक किरण जुल्म पे भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिव चंद्र प्रसाद की वार्ता। विषय था, समाज का निर्मम आईना है मंटो की कहानियां। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं

0: कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
2: और ये

0: ये तुम्हारे नाम
1: और ये
2: मेरी बुढ़िया के नाम।
0: पर दादी
3: हाँ
0: आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा देश भर के तीर्थ स्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल। कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों के भी नैक रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
8: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है उसी का परिणाम है सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसके पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
7: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज सोमनाथ में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है।
9: यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प देता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संसाधन या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है।
7: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है।
10: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे

0: पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में इस उन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और प्रतिवर्ष 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी नैक और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में 2 दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभा कार्य 30 मई तक पूरा कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
3: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
1: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान सीमैप और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कशिकर ने AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन ब्रीडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों के विकास पर प्रकाश डाला। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान

0: अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बुलबुल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। भीकाजी रुस्तम कामा का नाम क्रांतिकारी आंदोलन में विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने विदेश में रहकर भी भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर सहायता की। उनके ओजस्वी लेख और भाषण क्रांतिकारियों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा के स्रोत बने। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थीं, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए विख्यात हुई। उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा वर्तमान में है, ये मैडम कामा के नाम से प्रसिद्ध है। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर सन 1861 में एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता प्रसिद्ध व्यापारी थे। मैडम कामा ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेजी भाषा पर उनका प्रभुत्व था। श्री रुस्तम के आर कामा के साथ उनका विवाह हुआ। वे दोनों अधिवक्ता होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, लेकिन दोनों के विचार अलग थे। रुस्तम कामा उनकी अपनी संस्कृति को महान मानते थे, लेकिन मैडम कामा अपने राष्ट्र के विचारों से प्रभावित थीं। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश लोग भारत का के साथ छल कर रहे हैं, इसलिए वे भारत की स्वतंत्रता के लिए सदा चिंतित रहती थीं। उन्होंने श्रेष्ठ समाज सेवक दादा भाई नौरोजी के यहाँ सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया। यूरोप में युवकों को एकत्र कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया और ब्रिटिश शासन के बारे में जानकारी दी।

मैडम कामा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता के साथ ही बहुत सी सहायताएं की। सन 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी परिषद संपन्न हुई। इस परिषद के लिए विविध देशों के हजारों प्रतिनिधि आए। उस परिषद में मैडम भीकाजी कामा ने साड़ी पहनकर भारतीय झंडा हाथ में लेकर लोगों को भारत के विषय में जानकारी दी। मैडम भीकाजी कामा ने भारत का पहला झंडा फहराया, उसमें हरा, केसरिया तथा लाल रंग के पट्टे थे। लाल रंग यह शक्ति का प्रतीक है, केसरिया विजय का तथा हरा रंग साहस एवं उत्साह का प्रतीक है। उसी प्रकार आठ कमल के फूल भारत के आठ राज्यों के प्रतीक थे। वंदे मातरम यह देवनागरी अक्षरों में झंडे के मध्य लिखा था। यह झंडा वीर सावरकर ने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बनाया था।

जहां एक ओर परतंत्रता का दंश झेल रहा था भारत, वहीं सामाजिक स्तर पर भी पिछड़ेपन से जूझ रहा था हमारा देश। एक ओर औरतों को देवी बनाकर उन्हें पूजनीय माना जाता था, वहीं इसका दूसरा पहलू था कि लड़कियां अभिशाप मानी जाती थीं। एक ओर जहां महिलाओं के सामने अपने ही समाज से लड़ने की चुनौती थी, तो दूसरी ओर स्वतंत्रता की लड़ाई में महती भूमिका निभाने की प्रबल इच्छा। ऐसे में अगर कोई स्त्री पूरी तरह से देश की स्वतंत्रता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तो इसे अप्रतिम उदाहरण माना जाएगा। आजादी की लड़ाई में उन्हीं अग्रणियों में से एक नाम आता है, मैडम भीकाजी कामा का। दृढ़ विचारों वाली भीकाजी ने अगस्त 1907 को जर्मनी में आयोजित सभा में भारत का झंडा फहराया, जिसे वीर सावरकर और उनके कुछ साथियों ने मिलकर तैयार किया। यह आज के तिरंगे से थोड़ा भिन्न था। भीकाजी कामा ने स्वतंत्रता सेनानियों की तो आर्थिक मदद की ही, लेकिन जब देश में प्लेग फैला तो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की भरपूर सेवा की। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

मैडम कामा को क्रांति प्रसूता कहा जाने लगा। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन जीने वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उपजे खतरों और कठिनाइयों का सामना किया। वह अपने क्रांतिकारी विचार समाचार पत्र वंदे मातरम तथा तलवार में प्रकट करती थी। मैडम कामा की लड़ाई दुनिया भर के साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। वह भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महत्व को खूब समझती थी। धीरे धीरे मैडम कामा की क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती गईं। इससे पहले कि अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करें, वह फ्रांस चली गईं और वहां से वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया।

इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शामे गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सुदर्शन फाकिर की लिखी गजल जगजीत सिंह के स्वर में, आज फिल्म से।

में सुदर्शन फाकिर की लिखी गजल को भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज में दूरियां फिल्म से। कार्यक्रम जारी रहेगा, लेते हैं ये अंतराल।

0: जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शामे गजल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं तुम बिन फिल्म की गजल जगजीत सिंह की आवाज में। इसे लिखा है फैज अनवर ने, धुन बनाई है निखिल विनय ने।

आवाज में इसे लिखा था कैफी आजमी ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उमराव जान फिल्म की गजल आशा भोसले की आवाज में। शहर यार की रचना को संगीत दिया है खयाम ने।

अभी आप सुन रहे थे उमराव जान फिल्म की गज़ल आशा भोसले की आवाज़ में। इसके साथ ही शामे गज़ल का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं गंगा की लहरें फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की स्वर में। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन

अभी आप सुन रहे थे शोर फिल्म का गीत मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। गीत के बोल लिखे थे राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उपासना फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

अभी आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा

0: कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
3: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।

0: 22,622 करोड़।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

0: That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन के लिए जखीरा मौजूद है। मरकज ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। BJP लीडर हेमंत बिस्वा सरमा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में NDA की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। महकमा मौसमियात ने कल गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में गर्म लहर की पेशगोई की है। और क्रिकेट में भारत ने मर्दों की एक रोजा क्रिकेट की दर्जाबंदी में अपना अव्वल मकाम बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाजे को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। वजीर आजम वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के इफ्तिताह के बाद एक इज्तिमे से खिताब कर रहे थे।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस सूरत हाल का मुल्क के अवाम पर कम से कम असर पड़े। वजीर आजम ने मगरबी एशिया के बहरान के असरात से निमटने के लिए अपनी 7 नुकाती अपील को एक बार फिर दोहराया। इसमें ईंधन की खपत में कमी, जहां तक मुमकिन हो घर से काम करने को तरजीह देना, 1 साल के लिए गैर मुल्की सफर से इज्तिनाब करना और स्वदेशी मसनूआत को इख्तियार करना शामिल है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर यह भी कहा कि वो खाने के तेल की खपत में कमी करें, कुदरती काश्तकारी की जानिब पेशरफ्त करें और सोने की गैर जरूरी खरीद से गुरेज करें।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरदार धाम हॉस्टल में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सहूलत है। साथ ही मरकजी डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सहूलियात भी शामिल हैं। जनाब मोदी ने सरदार धाम इमारत में मुख्तलिफ सहूलियात का दौरा भी किया, जिसमें रिसेप्शन का एरिया और डाइनिंग एरिया, नीज ई लाइब्रेरी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर अव्वलियत का हामिल है और इसकी हैसियत अबदी है। ये मुल्क के तहजीबी हौसले और अटूट भक्ति का मुजाहरा करता है। जनाब मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मंदिर में महापूजा की और फिर कुंभ अभिषेक किया और परचम लहराया। ये तकरीबात भगवान शिव के लिए वक्फ इस बहाल किए गए मंदिर के इफ्तिताह के बाद 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद की गई। मंदिर के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि नौ तामीर शुदा सोमनाथ मंदिर के दरवाजे 1951 में उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में खोले गए थे, जो दुनिया के लिए इस बात का वाज़ह ऐलान है कि हमला आवर तारीख की धूल में कहीं पीछे रह गए और भारत की रूह कायम और दायम रही। मंदिर में एक इज्तिमे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से मंदिर की तामीर

0: नौ, भारत की अपनी सकाफत को फख्र के साथ महफूज करने के अज्म को जाहिर करती है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने

0: पास 60 दिन का खाम तेल, 60 दिन की कुदरती गैस और 45 दिन के लिए एलपीजी का जखीरा मौजूद है। ये बात नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया के मुतालिक वुजरा के गैर रस्मी ग्रुप की 5वीं मीटिंग के दौरान बताई गई। मीटिंग के दौरान इस बात की भी इत्तला दी गई कि जर मुबादला के जखायर 703 अरब अमरीकी डॉलर की खातिर खा मकदार में मौजूद हैं। हुकूमत ने बताया कि सप्लाई का इंतजाम बहुत अच्छा रहा है और लोगों को ईंधन और दीगर मसनूआत की खरीदारी के लिए परेशान होने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मीटिंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसरान को हिदायत दी कि जमीनी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर अमल आवरी के लिए ठोस इकदाम करें। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा था कि वो मेट्रो और आवामी आमदोरफ्त का इस्तेमाल करके और कार पुलिंग का तरीका इख्तियार करके पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करें। उन्होंने शहरियों से यह भी जोर देकर कहा था कि वो एक साल के लिए गैर जरूरी बैरून मुल्क सफर से इज्तनाब करके और मुल्क में ही सियाहत और तकरीबात मनाकर और गैर जरूरी सोने की खरीद से परहेज करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर को महफूज रखने में तआवुन दें। वजीर आजम ने किसानों से जोर देकर कहा था कि वो कीमियावी खादों के इस्तेमाल में 50% तक कमी करें और कुदरती काश्तकारी के तरीक़ेकार को अपनाएं, जमीन के रखरखाव में मदद करें, दरामदात पर इन्हिसार में कमी करें और काश्तकारी के लिए डीजल पंप के बजाय शमसी तवानाई से चलने वाले आबपाशी के पंप को वसी पैमाने पर इख्तियार करने की हौसला अफजाई करें। हुकूमत ने कहा कि मुल्क को इसके लिए एक बड़ी लागत का खर्च उठाना पड़ रहा है क्योंकि बैनुल अक्वामी खाम तेल की कीमतें लगातार बहुत ऊंची सतह पर हैं और ईंधन की बचत इस बोझ में कमी कर सकती है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: इस मीटिंग में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णो, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये आकाशवाणी है। मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आयोजिका मिशन देही कानून 2025 VBG रामजी के निफाज को नोटिफाई कर दिया है। यह कानून इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि यह कानून हर माली साल के दौरान 125 दिनों की रोजगार उजरत की गारंटी देते हुए देही भारत को बाइख्तियार बनाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क भर में मौजूदा माली साल के लिए नए फ्रेमवर्क को फ़ाल करने की खातिर 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून का मकसद माली साल के दौरान स्टेचुरी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस इजाफी रोजगार गारंटी के जरिए देही तरक्यात की रफ्तार में तेजी, आमदनी के तहफ़ की बेहतर जमानत और देही कुंभों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये कानून उजरत की अदायगियों को बरवक्त बनाने, शफाफ और जवाबदेह अदायगियों पर जोर देता है। साथ ही VBG रामजी कानून में मुकर्रा वक्त में काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर की कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ साथ हम आहंग करता है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
2: आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारी हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा सरमा ने मुत्तला किया कि हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और BJP सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई मरकजी वुजरा और BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आसाम में NDA की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। मगरबी बंगाल की नई रियासती हुकूमत ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीनी इजलास की सदारत की और अमनो कानून की सूरत हाल से मुतालिक रियासती सेक्रेटरिएट नबन्ना में इंतजामी मीटिंगें की। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: मगरबी बंगाल हुकूमत के 5 वजीरों में आज मुख्तलिफ कलमदान तकसीम किए गए। ان وزراء نے 9 مئی کو

0: वजीर आला शुभेंदु अधिकारी के साथ हलफ लिया था। एक बड़ी पेशरफ्त के तहत आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमों के मगरबी बंगाल में निफाज को मंजूरी दे दी गई। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज जराए इब्लाग को बताया कि भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए सरहदी मुहाफिज दस्ते BSF को अगले 45 दिन के अंदर ज़मीनें फराहम कर दी जाएंगी। साबिका TMC हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से फंड्स मौसूल होने के बावजूद ज़रूरी खित्ते आराजी की मुंतकली नहीं की थी। नई रियासती हुकूमत ने यह भी बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाह व बहबूद की किसी भी स्कीम को मगरबी बंगाल की नई हुकूमत बंद नहीं करेगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि शेरों की कुदरती पनाहगाहों की बहाली, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और बिरादरियों के जरिए उनके तहफ्फुज के लिए कॉरपोरेट फंडिंग जरूरी है। नई दिल्ली में आज CII सालाना कारोबारी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने सनती रहनुमाओं से शेरों की नस्ल के जानवरों को बचाने की आलमी कोशिशों की सरगर्म तौर पर हिमायत करने की अपील की। जनाब यादव ने यह भी बताया कि भारत अगले महीने की 1 और 2 तारीख को नई दिल्ली में शेरों की नस्ल के जानवर के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक पहली बैनुल अक्वामी चोटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद का मकसद शेर, बबर शेर, चीते और बर्फानी तेंदुए समेत इस नस्ल की 7 बड़ी इकसाम का तहफ्फुज़ करना है। पंजाब के रियासती इंतखाबी कमीशन ने रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 76 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 21 नगर पंचायतों समेत 105 मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान किया है। ये इंतखाब 26 मई को होंगे जबकि वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इन इंतखाबात में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 13 मई को शुरू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। पर्चों की जाँच पड़ताल 18 मई को होगी जबकि 19 मई तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इंतखाबी कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंतखाबात वाली सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, म्यूनिसिपल काउंसिलों और नगर पंचायतों की हदूद में मिसाली जाब्ता अखलाक फौरी तौर से नाफिजुल अमल हो गया है। ICC की जानिब से आज जारी की गई मर्दों की एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की टीम दर्जाबंदी में भारत ने अपना पहला मकाम बरकरार रखा है। ताहम भारत की दर्जाबंदी में 1 पॉइंट की कमी आई है और वो 119 पॉइंट से कम होकर 118 पॉइंट रह गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 2 पॉइंट हासिल करते हुए 113वां मकाम हासिल कर लिया है। इस मामूली गिरावट के बावजूद भारतीय टीम आलमी क्रिकेट में अब भी सरफहरिस्त एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी टीम है और गुज़िश्ता हफ्ते की अपडेट के बाद मर्दों की T20 बैन अल-अक़वामी दर्जाबंदी में भी अपना पहला मकाम बरकरार रखे हुए है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल गर्मी की लहर की हालात बरकरार रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4-5 दिन के दौरान मगरबी राजस्थान के इलाकों में रात के वक्त भी गर्म सूरत हाल रहेगी। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन के लिए जखीरा मौजूद है। मरकज ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। BJP लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में NDA की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान

0: चुकी हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सबको जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 4812 3717 1117 1117 106 और 2331 4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी आपसे सवाल, आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह के से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएं। तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी
0: शुरू हुई मई के महीने में जी, बहुत लगती है।
2: आग लगी और बहुत सारी आग हुई एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
0: जी।
2: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है
0: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
0: जी।
3: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गाँव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
0: जी,
3: लेकिन फायर ग्रिड पहुँचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है।
0: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
1: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है। और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है। तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पर जले और वहीं पर बुझाए, बाकी

0: आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है, तो उसमें अब एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
1: जी, राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी, नमस्कार, स्वागत है।
2: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-60, 70-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे एमसीडी है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
3: राजेंद्र जी, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, एसी हर घर में, हर ऑफिस में लगा होता है। एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं, तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं, वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी, और आप कंटिन्यू एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है, तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी, वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है, तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है, या एसी आवाज़ कर रहा है, या बार बार कोई चिंगारी निकल रही, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज़्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज़ कर रहे हो, आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीज़ों पर देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है, तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं, तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें, या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
3: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए, और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे, चला दिया, 90 डिग्री कर दिया, और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाज़ा खुल बनना, तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता, और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज़्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रेस्ट दें, इवन ए 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा, तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
0: हाँ नमस्कार, रमाशंकर वाजपेयी जी नमस्कार। आपका सवाल जो है, बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के

0: लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीजों का रखरखाव रखना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, एमसीबीज आते हैं, आरसीबीज आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रख रखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो
1: मेंटेनेंस
0: मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट, 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, डीएफएस, दिल्ली फायर सर्विस या कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है।
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
2: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं। प्रशांत
2: नहीं, लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप 3 सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता।

0: सचिव में नहीं होता, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद
1: अतुल जी। धर्मवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15 मिनट 16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
2: जी।
1: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया
2: जी।
1: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है मैं कह रहा हूँ, जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है वो बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
2: जी।
1: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसा आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो है प्रिकॉशन लें, हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस इंस्पेक्शन करेगी।
2: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
3: स्वामी
2: जी, विजय जी नमस्कार।
3: हाँ,
2: स्वागत है।
3: दीदी नमस्ते।
2: नमस्कार, सवाल।
3: हाँ, सर नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
2: जी।
4: नमस्कार विजय।
3: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
4: हाँ विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमिजिएटली फोन कर दीजिए, और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं। बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
2: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
4: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी के जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके

0: जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते
1: जाम हो जाते
0: हैं,
1: हैं
0: जाम हो
1: जी।
0: जाते तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीज़ें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
2: नमस्कार
0: जी।
2: जी, मैं श्रीपाद जाखड़ बोल रहा हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र से। तो
1: जी
2: मेरा सवाल ये है कि जैसे जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए कोई दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी हो, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब ये मेरा
1: जी
2: प्रश्न है।
1: जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर
0: तो
1: हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
0: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज़ है, उसके आसपास में जो जलने वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते हैं उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट
1: जी
0: ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर कहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: लवली जी नमस्कार,
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से, गलती से, और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर हैं आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
4: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज़। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है, कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
4: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता है, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने जो जहां भी फायर ब्रिगेड, मान लीजिए वो 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहां चिट्ठी लिखें, वहां से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं

0: एनजीओ को भी यूज कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया
0: जाए? नहीं, नंबर जो सबका एक ही है 101 ही होता है, आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूं कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: आरडब्ल्यूजे हो या कुछ भी,
2: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है, पानीपत से हैं ये शैलेंद्र शेंदुर कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सके? सीएनजी की भी हम बात करें तो सीएनजी वाहनों में बहुत आग लग रही है।
2: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा, जितना हो सकता है आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें यह है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
3: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शटडाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
0: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी ईएलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी जी प्रशांत जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, फिलहाल नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में हम करते हैं तहे दिल से आपका स्वागत। आर्ट इज द वॉइस ऑफ सोल, कला आत्मा की आवाज है। और ये भी कहा गया है कि ये एक ऐसी आवाज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। कला सीमाएं नहीं देखती।

0: से लेकर आज तक कला ने मानव के भावों को अभिव्यक्त करने का काम किया है, बखूबी किया है। और अगर संगीत की बात करें तो गीतों के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने किसी चाहने वाले दोस्त, रिश्तेदार या शुभचिंतक के लिए आप कोई गीत डेडिकेट करना चाहते हैं तो हम करते हैं आपका स्वागत कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं आज के एपिसोड के साथ और लेते हैं पहली कॉल।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, कैसी हैं मैम आप?
0: जी मैं ठीक हूँ। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैम मैं इमरान शेख बात कर रहा हूँ। मैं जिला बरेली का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी बुलंदशहर में आपके केंद्र से जुड़ा हूँ और मुझे आपके केंद्र के प्रोग्राम काफी पसंद आ रहे हैं मैम।
0: इमरान शेख जी, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: मैम अभी मैंने आपके जो किसानों के कार्यक्रम आते हैं शाम 5 बजे से जो शुरू होते हैं युवाणी के कार्यक्रम, अभी वो सुनना शुरू किए हैं और भी कई सारे प्रोग्रामों में मैं भाग ले रहा हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप इतने ध्यान से और इतनी लगन से कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपना कोई बहुत पसंदीदा कार्यक्रम बताएं और क्यों आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो।
1: बिल्कुल मैं जरूर बताना चाहूंगा मैम। एक आपके यहाँ से प्रोग्राम आते हैं मैम, शालिनी जी ने एक प्रोग्राम पेश किया था मैम, उसमें अस्थमा के ऊपर एक बीमारी पर चर्चा की थी, वो
0: अच्छा।
1: काफी पसंद मुझे प्रोग्राम आया मैम।
0: जी
1: तो इसी तरह के जो गजलों के प्रोग्राम है मैम ये भी सुनता हूँ, सुगम संगीत है, सभी प्रोग्राम में धीरे धीरे सुन रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपके केंद्र से नया जुड़ा हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है कि आप नए जुड़े हैं और इसके बाद आपका जुड़ाव इतना बढ़ता जा रहा है और आप इतने ध्यान से कार्यक्रम सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इमरान जी इसी तरह से आप बने रहिएगा आगे भी आकाशवाणी आगरा के साथ। फिलहाल आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी आगरा की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कि एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं और काफी मेहनत करते हैं।
0: शुक्रिया इमरान हाशमी जी। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि श्रोता है तभी हम हैं और हम हैं तभी बहुत सारी हमारी जो टीम है, मतलब हम लोगों का एक दूसरे के प्रति ही आत्मविश्वास जो है एक दूसरे को देखकर ही बढ़ता है। और जब आप जैसे श्रोता हमें कार्यक्रम में फोन करके अपनी पसंद बताते हैं और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं तो हम चाहते हैं कि और भी अच्छे कार्यक्रम आपके सामने ला सके।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम आज मैं राज मूवी का गाना सुनना चाहूंगा
0: जी,
1: जो कि गाने के बोल हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे।
0: आपके प्यार में अलका याग्निक जी की आवाज है ये
1: जी। मैम एक मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है, सोहिल नाम है उनका, वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मेरे साथ में
0: जी।
1: और मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा ये सॉन्ग।
0: ठीक है इमरान जी, हम आपकी पसंद को जरूर शामिल करते हैं कार्यक्रम में और आपको सुनवाते हैं ये गीत। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम
0: जी। शुक्रिया।

0: आपका
1: मैं
0: स्वागत
1: मोहम्मद
0: है।
1: सुहेल बात कर रहा हूँ, काशीपुर उत्तराखंड से।
0: मोहम्मद सुहेल जी बोल रहे हैं, काशीपुर उत्तराखंड से बोल रहे हैं आप।
1: जी जी जी
0: तो आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। मोहम्मद
1: जी मैम,
0: सुहेल जी
1: मैंने
0: जी आकाशवाणी आगरा सुनते हैं आप?
1: जी हाँ, मैं एप्लीकेशन के माध्यम से सुनता हूँ ऑनलाइन।
0: अच्छा, ऐप के माध्यम से सुनते हैं।
1: जी जी जी जी
0: कब से सुन रहे हैं आप?
1: ये मैंने अभी एक आध महीना हुआ है बस स्टार्ट किए हुए।
0: अच्छा, तो अभी आपने 1 महीने पहले से सुनना शुरू किया है। कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम हमारे?
1: जी अच्छे लगते हैं, मैं फ्राइडे में जो आते हैं ना, मैं वही वाले कार्यक्रम सुनता हूँ बस।
0: अच्छा,
1: जी जी
0: तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं एक मूवी है, मेरे हमदम मेरे सनम चल गाए जाम।
0: मेरे हमदम मेरे सनम फिल्म से आप सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये
1: हाँ
0: फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो है ये श्रोताओं के लिए ही है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं सबको 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
0: जैसे कि अब
1: और
0: इस
1: ये
0: कार्यक्रम में
1: अभी
0: हम
1: मैंने
0: श्रोताओं की फरमाइश को शामिल करते हैं, जैसे आपकी तरह ही और भी श्रोता हमें फोन कॉल्स करते हैं और उनकी पसंद
1: अच्छा
0: के गीत हम सुनवाते हैं। तो कार्यक्रम के बारे
1: जी
0: में कुछ कहना चाहते हैं आप? कैसा लगता है आपको कार्यक्रम?
1: जी बहुत अच्छा लगता है मुझे, सब सुनता हूँ मैं, सब मुझे अच्छा लगता है।
0: जी, तो ठीक है सुहेल जी, हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये गीत, और आगे भी आप अपनी फरमाइश हमको फोन
1: जी
0: करके
1: जी जी
0: कार्यक्रम में बता सकते हैं।
1: जी जी जी जी
0: इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो की जाती है हर शुक्रवार, समय है 12:30 से 2 बजे तक,
1: अच्छा मैम।
0: और इसका प्रसारण होता है सोमवार को रात
1: जी
0: को,
1: जी
0: सोमवार रात 10 बजे
1: अच्छा मैम, ओके
0: जी, और इसका दोबारा प्रसारण होता है मंगलवार 2:00 PM।
1: ओके मैम, शुक्रिया।
0: ठीक है, तो सुहेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं
1: जी
0: आपको ये गीत।
1: जी जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हाँ, मैं अनिल कुमार कुलश्रेष्ठ बोल रहा हूँ,
1: नमस्कार अनिल जी,
0: आगरा से बोल रहा हूँ मैं। जी
1: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। आप कहाँ से बोल रहे हैं अनिल जी?
0: मैं PNG कॉलोनी आगरा कैंट से बोल रहा हूँ।
1: जी, आप आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं?
0: मैं तो जब से आकाशवाणी आगरा में स्टेशन खुला है
1: जी
0: तभी से सुनो, बचपन से। मेरी आयु 76 वर्ष की है
1: जी
0: और मैंने बचपन से, जब से आगरा में आकाशवाणी स्टेशन खुला है
1: जी
0: तब से देख रहा हूँ।
1: प्रणाम करते हैं सर आपको और आपके इस जज्बे को भी कि आकाशवाणी आगरा से आप इतने समय से जुड़े हुए हैं और लगातार

0: तार जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: तो आकाशवाणी आगरा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप सर?
1: आकाशवाणी आगरा एक बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें समाज सेवा करने वालों को और जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको, सबकी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है और
0: जी
1: सबको अवसर दिया जाता है।
0: जी
1: एक आपके यहाँ किसी जमाने में स्वर्गीय श्री राममोहन दुबे जी म्यूजिक डायरेक्टर करके आया करते थे आपके।
0: जी लखनऊ, लखनऊ के।
1: हाँ, लखनऊ पर भी आगरा पर भी आते थे। तो उनका छोटा भाई बसंत मेरा क्लास फेलो था, तो हमारा अटैचमेंट रहा है काफी।
0: जी राममोहन दुबे जी जो है सर, वो लखनऊ केंद्र के निदेशक थे ना?
1: नहीं सर, वो यहाँ के थे, आगरा के ही
0: जी
1: संगीतकार थे वो, और वो आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। तो उनका छोटा भाई मेरा क्लास फेलो था।
0: अरे सर, बहुत जानकर खुशी हुई। और ये बात आपने जो कही कि प्रतिभाओं को सम्मान दिया जाता है, हमारी जो कोशिश है वो भी यही है, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये आकाशवाणी का उद्देश्य है।
1: जी हाँ जी हाँ
0: तो कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद जो कार्यक्रम है, ये आपने इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर, ये श्रोताओं के लिए है?
1: हाँ ये तो ऐसा है कि इसके माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना अपने मन की बात, तो उनके मन
0: जी
1: की बात वो 140 करोड़ भारतवासियों की बात बन जाती है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब
1: ऐसे ही जो आपका ये जो प्रोग्राम है आपके पसंद वाला,
0: जी।
1: तो ऐसा लगता है कि जितने आकाशवाणी के श्रोता हैं, भारत के नागरिक हैं 140 करोड़, वो
0: जी
1: साफ जुड़ जाते हैं इससे।
0: आपने तो जो जिस चीज की मिसाल दी है, कह लें कि एक तरीके से जो आपने तुलना की है, मतलब वो
1: जी
0: बहुत ही प्रशंसनीय है सर। और हम
1: जी
0: जरूर कोशिश करेंगे कि हमारी जो बात है वो, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक जुड़ सकें और श्रोता अपने मन की बात, अपने मन की पसंद हमें बता सकें।
1: हाँ बिल्कुल, अगर मोदी जी को बता सकते हैं मन की बात, तो आकाशवाणी को भी बता सकते हैं, आकाशवाणी और
0: आकाशवाणी के
1: मोदी
0: माध्यम
1: जी।
0: से ही बताते हैं सर मन की बात।
1: हाँ
0: आकाशवाणी के
1: ये
0: माध्यम से ये, इसको कहते हुए हम बहुत
1: आकाशवाणी
0: गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
1: तो ऐसी है जो ऊपर वाले को नीचे वालों से कनेक्ट करती है।
0: बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रशंसनीय वाक्य के लिए। और कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे
1: क्या भजन सुनवा सकती हैं?
0: जी? फिल्मों से जुड़ा हुआ कोई भक्तिमय प्रस्तुति, फिल्मों में भी कई ऐसी भक्तिमय प्रस्तुतियां हैं, तो आप बताइए।
1: हाँ तो वो सुनवाइए, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा।
0: वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, जी बहुत सुंदर भजन है जी, हम कोशिश करते हैं और आपको सुनवाते हैं। आप लगातार इसी तरह हमारे कार्यक्रम से बने रहिएगा, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा सर, हमें
1: मतलब
0: प्रतीक्षा रहेगी।
1: रोक टोक तो नहीं है, अगर दोबारा कभी और कोई सुनना चाहे तो कर सकते हैं।
0: नहीं सर, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, आप हर बार कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर,
1: तो नमस्कार।
0: नमस्कार सर।

0: इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हूँ।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो
0: हाँ
1: मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप और ऑफिसर
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ जी मैम।
1: तो आपको तो बहुत सारे अनुभव होते होंगे इमरजेंसी सेवाओं को लेकर और मतलब मरीजों के जो आपातकालीन जो स्थितियां पैदा होती हैं उसको लेकर। तो ऐसे
0: हाँ
1: में
0: जी मैम।
1: संगीत का क्या रोल मानते हैं आपकी, जैसे जब कभी जीवन में थोड़ा सुकून की जरूरत होती है या तनाव से थोड़ा आराम चाहिए होता है, तो ऐसे में संगीत की भूमिका क्या होती है?
0: संगीत की भूमिका होती है मैम, जो पेशेंट्स होता है मैम,
1: जी
0: जो अगर एडमिटेड है तो जो उसके मेडिसिन और जो उसके ट्रीटमेंट चल तो रहा ही है, लेकिन वो उस कंडीशन में वो थोड़ी मेडिकल टेंस होता है, और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उसके उस साइकेट्रिक या उस उसके मेंटल एक्यूट मेंटल इलनेस को
1: जी
0: संगीत के थ्रू काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो संगीत की एक ये भूमिका होती है
1: जी
0: उस मेडिकली इल पेशेंट में।
1: जी क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया और उम्दा बात कही आपने। तो क्या आपको ऐसे अनुभव भी हुए हैं आपके करियर के दौरान?
0: हाँ जी मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते जो है बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उस टाइम तो होता है कि यार कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ
1: रिलैक्स
0: जाए,
1: चाहिए
0: तो
1: होता
0: उसमें
1: है।
0: हाँ तो उसमें रिलैक्स हुआ जाए, तो उसके लिए मैम अगर थोड़ा सा एक स्लो म्यूजिक अगर चला दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि स्ट्रेस काफी हद तक दूर हो गया। तो इस म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
1: नहीं, जैसे पेशेंट्स को लेकर आपको अनुभव हुआ है, ये तो आप शायद अपनी खुद की बात कर रहे हैं, जैसे मरीजों को लेकर आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि आपने देखा हो।
0: हाँ जी मैम, पेशेंट्स जो वार्ड्स में जनरली जो इमरजेंसीज में होते हैं वो पेशेंट तो मेडिकली साउंड नहीं होते
1: वो तो
0: हैं,
1: नहीं
0: क्योंकि वो
1: यहाँ कर
0: म्यूजिक
1: पाते हैं। जी
0: सुनते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन जो वार्ड में पेशेंट्स होते हैं
1: थोड़े
0: उनको मैंने
1: स्टेबल
0: बहुत
1: होते
0: बार
1: हैं।
0: अनुभव किया है कि वो अपने ईयरफोन लगा के या
1: जी
0: जिनको उस चीजों में रुचि होती है तो वो म्यूजिक काफी सुनते हैं, और काफी हद तक वो उस एक्यूट मेडिकल इलनेस कंडीशन से वो काफी अच्छा उनको फील
1: उनकी
0: होता है।
1: रिकवरी में बहुत इससे मदद मिलती है।
0: जी हाँ हाँ जी मैम।
1: जी ठीक है डॉक्टर शिव, आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मैम अभी मैं सुनना चाहता हूँ अभी न जाओ छोड़ के,
1: क्या
0: अभी तो
1: बात
0: दिल
1: है,
0: भरा नहीं।
1: बहुत सुंदर गीत है ये
0: हाँ जी
1: मोहम्मद
0: मैम।
1: रफी जी की आवाज में।
0: हाँ जी मैम।
1: और आइए सुनाते हैं आपको फिल्म हम दोनों का ये गीत, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कॉल करेंगे कार्यक्रम
0: जी
1: में।
0: हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। थैंक यू सो
1: धन्यवाद
0: मच।
1: डॉक्टर शिव।
0: ओके ओके थैंक यू।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: जीवन के इस सफर में उम्मीदों की रोशनी को कभी कम ना होने दें। आशा के लिए अपने जीवन में हमेशा द्वार खुले रखें। जी हाँ, विश्वास एक ऐसी ताकत है जिसके आधार पर तय होती है कोई भी मजबूत इमारत। जी हाँ, एक सुंदर और सच्चे भविष्य की जीवन की इमारत। ऐसा ही एक विश्वास से जुड़ा हुआ नाता है हमारा हमारे श्रोताओं से। आकाशवाणी परिवार अपने श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और हम आपसे कहते हैं कि आपके कॉल्स हमारे पास निरंतर आ रहे हैं। कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद को सफल बनाने में आपका बहुत बहुत योगदान है। तो भेजिए हमें अपनी फरमाइश और कीजिए कॉल। कॉल के माध्यम से बताइए हमें कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद संपन्न होता है। मैं वैशाली शर्मा आपको बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होती है। फोन नंबर है 0562-3501-852 और 0562-297-0337। इस नंबर पर फोन करके आप अपनी फरमाइश हमें बता सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण सोमवार रात 10 बजे होता है और इसका पुनः प्रसारण मंगलवार को दोपहर 3 बजे आप सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। संवादक थी वैशाली शर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनिंद्र सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शुभ्रा तलेगांवकर का राग केदार में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शुभ्रा तलेगांवकर का राग केदार में ख्याल गायन। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में

हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।